सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शुक्रवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 8, तदनुसार 29 मई सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid-ul-Azha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The CBI has arrested Giribala Singh in the Trisha Sharma death case. Giribala is Trisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davangere, Karnataka. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has said it targeted an American airbase in the region after fresh U.S. strikes on southern Iran overnight. Kuwait, which hosts a U.S. base, said it had intercepted hostile missile and drone threats, but did not confirm the target. The Iranian missile launch came after the U.S. shot down Iranian drones over the Strait of Hormuz and struck a military site in Bandar Abbas, a strategic port city in southern Iran. In IPL cricket, Gujarat Titans and Rajasthan Royals will meet in the all-important qualifier 2 at the Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
3: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं जैविक कीटनाशी का प्रयोग और तैयार करने की विधि के संबंध में।

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करेंगे जैविक कीटनाशी के उपयोग और बनाने की विधि तथा इसके लाभ के विषयों पर। कृषक मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैविक कीटनाशक प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों के अर्क, नीम, गोमूत्र और छाछ से तैयार किए जाते हैं। यह बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाए फसलों को कीटों और बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। आइए जानते हैं कि जैविक कीटनाशक बनाने की विधि क्या है। इसके लिए 10 प्रकार की पत्तियां होनी चाहिए, जिसमें नीम, करंज, पपीता, सीताफल, अरंडी, निर्गुंडी, कनेर, मदार, अमरुद और तुलसी या गिलोय में से कोई भी 10 तरह की पत्तियां लेनी है और लगभग 5 किलोग्राम मात्रा के हिसाब से लेनी है। 1 किलो हरी मिर्च और 1 किलो लहसुन का पेस्ट भी बना लेना है। 5 लीटर ताजा गोमूत्र और 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम भी होना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसके बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है। सभी 10 प्रकार की पत्तियों को बारीक काट लें। 200 लीटर पानी से भरे ड्रम में कटी हुई पत्तियां, लहसुन, मिर्च का पेस्ट और गोमूत्र डाल दें। ड्रम को किसी सूती कपड़े या ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दें। इस मिश्रण को 40 दिनों तक छांव में सड़ने दें। इस दौरान इसे रोजाना सुबह शाम किसी लकड़ी से एक बार जरूर हिलाएं। 40 दिन बाद आपका जैविक कीटनाशक तैयार हो जाएगा। इसे छान कर किसी बोतल में रख लें। और अब इसका उपयोग कैसे करें ये भी जान लेते हैं। 15 लीटर पानी के स्प्रे पंप में 250 से 300 मिलीलीटर यह तैयार घोल को मिला लेना चाहिए और फिर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहला लाभ है कि यह सुरक्षित और विष मुक्त है, यानी इनके प्रयोग से उत्पादित फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित होती हैं और आप छिड़काव के तुरंत बाद भी फसल तोड़ सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण के अनुकूल, यानी ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते और मिट्टी के मित्र केचुआ या अन्य अच्छे जीवाणुओं को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तीसरा है उत्पादन लागत में कमी। इन्हें घर पर आसानी से उपलब्ध चीजों से बनाया जा सकता है, जिससे बाजार में मिलने वाले महंगे रसायनों पर होने वाला खर्च बचता है। और चौथा है विभिन्न रोगों से बचाव, यानी ये इल्ली यानी कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े और फंगस यानी फफूंदी को नष्ट करने में बेहद कारगर हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जैविक कीटनाशी का उपयोग आप सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा कीटनाशक है जो आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करता है, क्योंकि यह प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसलिए यह सिर्फ उन पर वार करता है जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी उन कीड़ों को यह मारता है जहां पर आपका नुकसान हो रहा होता है, लेकिन आप किसान भाई बहनों को यह नुकसान जरा भी नहीं करता। जैविक कीटनाशी के उपयोग, बनाने की विधि और लाभ, इन्हीं विषयों पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी किसान भाई बहनों को पुनः एक बार जोहार। आपका दिन शुभ हो।

जैविक कीटनाशी का प्रयोग तैयार करने की विधि और इसके लाभ के संबंध में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना भी तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, वंदना की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

देश को समर्पित ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना संवेद स्वरों में। श्रोताओं, सुबह सुबह ईश्वर की आराधना हमें पूरे दिन ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता है। हमें ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो हर पल हमारे साथ होता है, हमें संबल प्रदान करता है। ईश्वर की भक्ति से अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, दुराग्रह और गर्व का नाश होता है। नम्रता, प्रेम, करुणा और सहनशीलता का विकास होता है। स्वार्थपरता समूल नष्ट हो जाती है और जीवन में एकत्व का अनुभव होता है। आइए सुने कुछ भक्ति रचनाएं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। आज के कलाकार हैं महेंद्र कपूर और साथी।

कार्यक्रम वंदना में आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में आरती। श्रोताओं, आपकी सुबह सुहानी हो और सारा दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम वंदना से चाहूंगी इजाजत। नमस्कार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव

तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने न पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई।

0: करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओ, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के तहत आज सुनिएगा पंकज उदास की आवाज में चंद गजलें। सात बजकर 20 मिनट का समय होगा कार्यक्रम लोक गीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गणेश पंडित और साथियों की आवाजों में कुछ भोजपुरी लोकगीत। सुबह 7:35 का समय होता है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा गोरा चंद मुखोपाध्याय की आवाज में आधुनिक बांग्ला गान। सात बजकर 50 मिनट पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत आज भेंट वार्ता का विषय होगा रतौंधी, लक्षण, कारण एवं बचाव। इस विषय पर हमें बताएंगे डॉक्टर विवेक केड़िया। आठ बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आठ बजकर 45 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा। इसके तहत आज सुनिएगा वार्ता विषय होगा गांधी जी के परिवेश और पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचार। नौ बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 9:05 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। शुक्रवार विशेष सुरंजना में आज सुनिएगा एक ही गायिका। नौ बजकर 30 मिनट का समय होता है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिएगा इस कार्यक्रम में विदुषी परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन और भजन। दस बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण। इन तीनों का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे सुबह 10:20 पर। आनंद लीजिएगा कुछ गीतों का। ग्यारह 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में चंद गजलें। दुआओं की भीड़ में दुआ हमारी, जिसमें मांगी हमने है खुशी तुम्हारी। जब भी मुस्कुराएं आप दिल से, समझो दुआ कबूल हुई हमारी। जमीर काजमी की लिखी ये गजल सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में।

कुछ नशा तो आपकी बातों का है, कुछ नशा तो धीमी बरसात का है। हमें आप यूं ही शराबी न कहिए, इस दिल पर असर तो आपकी मुलाकातों का है। आइए, ज़मीर काज़मी की लिखी ये गज़ल सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में।

0: पंकज उदास की आवाज़ में गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम लोकगीत सुनेगा थोड़ी ही देर में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700।

0: 0001-4242.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी।

गणेश पंडित और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार हैं गोरा चंद मुखोपाध्याय।

गोराचंद मुखोपाध्याय की आवाज में आप सुन रहे थे आधुनिक गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है रतौंधी, लक्षण, कारण और बचाव। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर विवेक केड़िया,

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज बातें रतौंधि के बारे में। ये है क्या, किन कारणों से होता है और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक केडिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि रतौंधि हम कहते किसे हैं।
1: रतौंधि, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टलोपिया कहते हैं, इसमें इंसान की कम रोशनी या फिर अंधेरे में देखने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। इसके होने के कई कारण हैं। बच्चों और बड़ों में होने का कारण अलग अलग होता है। बच्चों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि सही तरह से टीकाकरण नहीं होना।
0: अच्छा, बचपन में जो टीकाकरण होता
1: है। जी, टीकाकरण सही तरह से नहीं होना। दूसरा कि अगर उनको आंत के इन्फेक्शन या बीमारियां बार बार होती हैं, जिसके कारण कि उनका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, तो उस लिए भी विटामिन का जो अब्सॉर्प्शन है शरीर में वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। और इसी कारण अगर उनको माल न्यूट्रिशन होता है, खान पान में कमी रहती है, ऐसी चीजें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, पीले या लाल रंग के फल हुए, अगर ये सब उनके खान पान में ना हो तो उसके कारण भी बच्चों में ये नाइट ब्लाइंडनेस होने का रिस्क रहता है।
0: किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं, कैसे लोगों को पता चले कि वो रतौंधि के शिकार हो रहे हैं?
1: रतौंधि जिनको होता है, ये चीज अमूमन माँ बाप ही देखते हैं कि बच्चे शाम के वक्त या अंधेरे के वक्त वो ज्यादा टहलना नहीं चाहते। अच्छा। वे अगर एक कमरे में रोशनी ज्यादा है तो वहीं पर बैठा रहना पसंद करेंगे। उनको अगर बोलिए घर के बाहर जाकर कुछ काम है शाम को कराने के लिए, तो वो उससे थोड़ा सा बचते हैं, दूर भागते हैं। बड़ों में भी रतौंधि पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही है। और बड़ों में जनरली कारण होता है फिर से वही पाचन शक्ति का कमजोर होना या फिर लिवर की बीमारियां एक बहुत बड़ा कारण है बड़ों में होने का। और उनमें जनरली हम ये देखते हैं कि उनको रात में गाड़ी चलाने में या रात में बाहर टहलने में दिक्कत होती है।
0: इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, खान पान में हमें क्या लेना चाहिए ताकि हम रतौंधी से बचे रहें?
1: खान पान में बहुत जरूरी है हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, पीले एवं लाल रंग के फल जो होते हैं वो खाना बहुत जरूरी है। जो लोग मांसाहार लेते हैं उनके लिए हम रेड मीट जिसको बोलते हैं, लाल मांस जो होता है, अच्छा। वो खाना, अंडे, मछली, इन सब में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है।
0: डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं रतौंधी की, तो क्या रतौंधी किसी खास वर्ग के लोगों में ज्यादा होता है या फिर किसी को भी हो सकता है?
1: अभी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पूरे दुनिया भर में ऑलमोस्ट 50 लाख बच्चे रतौंधी से ग्रसित हैं। हमारे देश में अकेले हर साल तकरीबन 5 लाख बच्चे रतौंधी के शिकार हो जाते हैं। और ये चीज पाया जा रहा है कि ये ज्यादातर जो गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके की खान पान में थोड़ी कमी रह जाती है या फिर जो अपना टीकाकरण ठीक से नहीं करवा पाते हैं, उन्हीं में ये चीज ज्यादा पाया जा रहा है।
0: अगर किसी को रतौंधी हो गया है तो इसका फिर ट्रीटमेंट किस तरह से आप लोग करते हैं?
1: रतौंधी का ट्रीटमेंट सिर्फ विटामिन ए के सप्लीमेंटेशन से ही होता है। खानपान में सुधार करना बहुत जरूरी है। अलग से बच्चों में विटामिन ए दिए रहे तो उसको देने का एक तरीका है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ये एक मापदंड है विटामिन ए का, पहले दिन, दूसरे दिन और 14वें दिन,
0: अच्छा,
1: ऐसे देना होता है। 6 से 12 महीने के बच्चों में 50 की जगह 1,00,000 यूनिट, फिर से पहले दिन, दूसरे दिन और 14वें दिन, और 12 महीने से बड़े जो भी बच्चे या फिर अडल्ट्स में भी ये चीज 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है, पहले, दूसरे और 14वें दिन।
0: ऐसा अगर सही तरीके से किया जाए तो ये मुमकिन है कि उसे रतौंधी की जो समस्या है वो दूर हो जाए?
1: हाँ, हम लोग तो ये चीज देख ही रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट शेड्यूल फॉलो करने से काफी लोगों को फायदा हुआ है।
0: डॉक्टर साहब, आपने जो उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

रतौंधी लक्षण कारण और बचाव, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भेंटवार्ता थे डॉक्टर विवेक केड़िया और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।

0: FM के 102.4 MHz पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिलहाल शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गयी।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
3: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
0: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Santa's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड समेत 12 राज्यों को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण आवास के लिए जारी किए 10,000 करोड़। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकलने की दी सख्त चेतावनी। कहा, देश में किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में सियासी हलचल तेज। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के बड़े नेता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत 20 जिलों में 1 जून तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य के 3 खिलाड़ियों का चयन। मार्शल आर्ट्स में झारखंड ने जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत देश के 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है देश का कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे।
1: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बोकारो पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड के अंदर जितने भी घुसपैठी छिपे हुए हैं वे तुरंत बाहर निकल जाएं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का साफ संदेश है कि देश में किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा।
2: 1,00,000 बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए रांची में घुस चुके हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई आप झारखंड छोड़ के भागो, देश छोड़ के भागो। ये अमित शाह है जिन्होंने कहा अब देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की जेल भेजने वाली धमकी पर कड़ा जवाब दिया है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते। श्री मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री को सीएजी की रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसमें एम्बुलेंस के दुरुपयोग और लापरवाही की बात साफ कही गई है।
3: मंत्री को तो सीएजी का रिपोर्ट देखनी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या लापरवाही हुई, दुरुपयोग हो रहा है। कई मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, एक हॉस्पिटल बना हुआ है और डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है, तो फिर इक्विपमेंट चलाने वाला व्यक्ति को तो आप बहाल करते, तो भी आपके डॉक्टर नहीं रहता है तो क्या उद्घाटन होगा, डॉक्टर नहीं है, इधर तो नहीं है।
0: राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क आज रांची पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान दोनों नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ किया है कि पार्टी संगठन से एक राज्यसभा सीट की मांग करेगी।
4: हमारे प्रभारी के राजू सर और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी साहब आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम कांग्रेस जनों के साथ वे लोग बातचीत करेंगे। तो कांग्रेस की इच्छा है कि एक सीट इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को मिले।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना 2027 को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पार्टी अब पूरी तरह मिशन मोड में काम कर रही है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे खुद राज्य भर में घूमकर नेताओं और बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जेएमएम का लक्ष्य हर पंचायत और बूथ तक संगठन को मजबूत करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सएंडल @ IR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार @xhandle@rangi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 में नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ डॉक्टर मीरा मुंडा, मुकेश भगत और राजेश कुमार मुन्ना भी मौजूद रहे। श्री मुंडा ने कहा कि देश के गरीबों तक सस्ती और अच्छी दवाइयां पहुंचाना प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे मरीजों को ज्यादा से अधिक जेनेरिक दवाएं ही लिखें।
5: ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोग्राम है जो देश भर में पैन इंडिया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक मेडिसिन उसको उपलब्ध हो ताकि हर आदमी को दवा उपलब्ध होता हो, जिनके इसमें दवा की कीमत ऐसे हो जिससे कोई आम आदमी दवा प्राप्त कर सके।
0: वन विभाग ने हजारीबाग के मोतरा अधिसूचित वन क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने जंगल से करीब 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है। अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल में अवैध रूप से कोयला जमा किया जा रहा है। इसके बाद टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर जंगल के अलग अलग हिस्सों से भारी मात्रा में कोयला बरामद किया। लातेहार जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से नशीला पदार्थ और उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पकड़े गए अपराधी इलाके में युवाओं को अपना शिकार बनाते थे और काफी समय से नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना का पता लगाने में जुटी है। राज्य में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर 2 टर्फ लाइन सक्रिय है, जिससे अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आई है। आने वाले 2-3 दिनों में तापमान 3-4 डिग्री और गिर सकता है। मौसम विभाग ने 1 जून तक राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत करीब 20 जिलों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आगामी थाईलैंड दौरे के लिए घोषित भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य के 3 होनहार खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों के नाम आदर्श राज, ऋषि राज और जेनुअल हक है। भारतीय टीम इस दौरे पर 5 दिवसीय इंडो थाई क्रिकेट सीरीज में हिस्सा लेगी। सभी खिलाड़ी कल कोलकाता के रास्ते थाईलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। मुंबई में आयोजित 6वीं नेशनल जीत कुने 2 मार्शल आर्ट्स फेडरेशन कप में राज्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पछाड़कर झारखंड ने पहला स्थान हासिल किया। राज्य के मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में कुल 19 पदक जीते। इनमें 11 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची के लापुंग से 10 लाख के इनामी उग्रवादी की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेशा को लेकर 19 विभागों ने 3 माह बाद भी नहीं दी एसओपी, स्थानीय स्वशासन का सपना अधूरा। हिंदुस्तान लिखता है, वेतन विपत्र भुगतान की प्रक्रिया को बनाया गया सुरक्षित और पारदर्शी। प्रभात खबर के शब्द हैं, बीआईटी मिश्रा में झारखंड के विद्यार्थियों का खत्म हुआ 50% कोटा, सरकार के साथ एमओयू 2 साल से लंबित। दैनिक जागरण ने लिखा है, नहीं रहे मोहब्बत के पैगाम बांटने वाले शायर बशीर बद्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड समेत 12 राज्यों को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण आवास के लिए जारी किए 10,000 करोड़। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकलने की दी सख्त चेतावनी, कहा देश में किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में सियासी हलचल तेज। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के बड़े नेता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत 20 जिलों में 1 जून तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य के 3 खिलाड़ियों का चयन। मार्शल आर्ट्स में झारखंड ने जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गांधी जी का संदेश था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। सादगी, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सीमित उपभोग अपनाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। महात्मा गांधी के पर्यावरण संबंधी विचार आज भी बहुत प्रासंगिक माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति और परिवेश के साथ संतुलित जीवन पर जोर दिया। यद्यपि उस समय पर्यावरण संरक्षण शब्द इतना प्रचलित नहीं था, फिर भी उनके विचारों में प्रकृति, सादगी और संसाधनों के संतुलित उपयोग का स्पष्ट संदेश मिलता है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ऐसे समय में महात्मा गांधी के विचार अत्यंत प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उनके जीवन दर्शन में प्रकृति संरक्षण, संतुलित विकास और सादगीपूर्ण जीवन का गहरा संदेश मिलता है। उनके विचार आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की आधारशिला माने जाते हैं। गांधी जी प्रकृति को केवल संसाधनों का भंडार नहीं मानते थे, बल्कि उसे मानव जीवन का अभिन्न अंग समझते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध सहयोग और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। वे कहते थे कि यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे तो पृथ्वी सभी की जरूरतें पूरी कर सकती है। वो सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। उनका मानना था कि अत्यधिक उपभोग और विलासिता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वे स्वयं अत्यंत साधारण जीवन जीते थे और लोगों को भी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि इससे संसाधनों की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और अनावश्यक उपभोग पर रोक लगती है। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। इसलिए आवश्यकता और लालच के बीच अंतर समझना जरूरी है। आज लोग अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने और उपभोग करने की दौड़ में लगे हैं। इससे प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं और ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। गांधी जी का संयम का सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बन सकता है। गांधी जी ग्राम स्वराज के समर्थक थे। उनका विचार था कि गांव आत्मनिर्भर

और स्थानीय स्तर पर उत्पादन करें। इससे स्थानीय उत्पादन से परिवहन कम होगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण घटेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। वैसे छोटे उद्योग पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। उन्होंने चरखा और खादी को केवल आर्थिक साधन नहीं बल्कि स्वावलंबन और पर्यावरण अनुकूल जीवन का प्रतीक बनाया। वो बड़े उद्योगों और मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग के विरोधी थे। उनका मानना था कि अत्यधिक औद्योगिकरण प्रदूषण को बढ़ाता है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है और मानव श्रम का महत्व कम करता है। वे ऐसे विकास के पक्षधर थे जिसमें मानव और परिवेश दोनों का हित सुरक्षित रहे। आज कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जल स्रोत भी औद्योगिक कचरे से दूषित हो रहे हैं। गांधी जी ने बहुत पहले ही इन खतरों की ओर संकेत कर दिया था। उन्होंने स्वच्छता को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। वे कहते थे कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। यही वजह है कि वो स्वयं सफाई कार्य करते थे, लोगों को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते थे, गंदगी और अस्वास्थ्यकर वातावरण का विरोध करते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता से बीमारियां कम होंगी, जल और भूमि प्रदूषण घटेगा, साथ ही स्वस्थ वातावरण बनेगा। आज का स्वच्छ भारत अभियान भी गांधी जी के विचारों से प्रेरित माना जाता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, वे सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति दया और करुणा का भाव रखते थे। उनका संदेश था कि पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का विनाश मानवता के विरुद्ध हिंसा है। आज जैव विविधता संरक्षण और पशु अधिकारों के विचार गांधी जी की सोच से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस तरह अहिंसा का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि गांधी जी का दृष्टिकोण था कि वर्तमान पीढ़ी अपनी जरूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। आज विश्व कई पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जैव विविधता का नाश। इन समस्याओं का समाधान गांधी जी के विचारों में देखा जा सकता है। यदि हम सादा जीवन अपनाएं, सीमित उपभोग करें, प्रकृति और परिवेश का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें तो पर्यावरण संरक्षण संभव है। विद्यालयों और समाज में गांधी जी के पर्यावरण संबंधी विचारों को अपनाकर बच्चों में प्रकृति और परिवेश के प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता है। जल और ऊर्जा संरक्षण की आदत डाली जा सकती है, प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकता है और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सकता है। महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि दूरदर्शी चिंतक भी थे। उनके विचार मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने सादगी, संयम, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और अहिंसा के माध्यम से ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जो आज के पर्यावरण संकट का प्रभावी समाधान बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गांधी जी के सिद्धांतों को केवल पढ़े नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाएं, तभी परिवेश और पर्यावरण संरक्षण में हमें सफलता मिल सकती है। गांधी जी के परिवेश और पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचार। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर कुछ जानकारी और अब आइए सुनते हैं बापू के प्रिय भजन का कुछ अंश।

0: कार्यक्रम गांधी चर्चा अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय, वाचन स्वर था शिखा अखौरी का। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन BSF को सौंप दी गई है। गृह मंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 और 12 सेकंड हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं, और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
7: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
6: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ
6: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
8: दिन के 11:05 से 12 तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
9: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। कार्यक्रम सुरंजना सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आज आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव का नमस्कार। आज सुरंजना में सुनिए एक ही गायिका।

जी हाँ श्रोताओं, आज सुरंजना की गलियारे में गूंज रही है श्रेया घोषाल की मखमली आवाज़। बहरहाल आपको बता दें, ये गीत आपने सुना फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से। A.M. तुराज ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इसे संगीतबद्ध किया था।

जिस्म फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था नीलेश मिश्रा ने, संगीतबद्ध किया था एमएम क्रीम ने, श्रेया घोषाल का साथ दिया था शान ने। दोस्तों, श्रेया घोषाल भारतीय संगीत जगत की सबसे मशहूर पार्श्व गायिका हैं। अपनी मखमली, भावपूर्ण और मधुर आवाज के लिए पहचानी जाने वाली श्रेया ने बहुत छोटी उम्र से शास्त्रीय संगीत सीखा और वे कई बार अपनी जादुई गायकी से लोगों का दिल जीत चुकी हैं।

मिश्रा ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, श्रेया घोषाल की आवाज़ की सबसे खासियत या सबसे बड़ी ताकत कह लीजिए ये है कि उनकी क्रिस्टल क्लियर गुणवत्ता वाली आवाज़ जो शब्दों को बहुत गहराई से श्रोताओं तक पहुंचा देती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से।

जफी मिट इस फिल्म का गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुरंजना से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 9:30 और 20 सेकंड हुए हैं। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं विदुषी परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन राग दीन तोड़ी में।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन राग दीन तोड़ी में, और अब आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं एक भजन।

विदुषी परवीन सुल्ताना की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भजन और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ।

सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या की बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Keval Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ सकता है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में गोलमेज बैठक में भाग लिया। उन्होंने 50 से अधिक व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत की। ये बैठक भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से आयोजित की गई थी। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक विकास स्थिति, सुधार आधारित व्यापार माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि अमरीका ने कहा है कि उसने मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया। पिछले तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान में कार्रवाई की है। अमरीका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। बढ़ती सैन्य कार्रवाई से अमरीका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमरीका के विदेश विभाग ने ब्राजील के दो बड़े आपराधिक गिरोहों फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल यानी PCC और रेड कमांड यानी CV को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों गिरोहों के कुल सदस्यों की संख्या 50,000 से अधिक हो सकती है। ट्रंप प्रशासन लैटिन अमरीका में ड्रग तस्करी और संगठित अपराध पर सख्ती के तहत इस तरह के कदम उठा रहा है। अमरीका के डलास शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुए भीषण विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। डलास फायर रेस्क्यू के प्रवक्ता जेसन इवांस ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला संक्रमण के बीच अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्रा उपायों पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। तीनों देशों ने कहा है कि ये समन्वित कदम नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान आने वाले लाखों पर्यटकों, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जबकि सीमाओं पर यात्रा और व्यापार जारी रहेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इबोला को देश में फैलने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उधर पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेसस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला प्रकोप बेहद जटिल स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में संघर्ष, असुरक्षा, लोगों का विस्थापन

0: व्यवस्थापन, खाद्य संकट और सामुदायिक अविश्वास जैसी समस्याएं संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों में बड़ी बाधा बन रही हैं। श्री टेड्रोस ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को यह संदेश देना है कि वे अकेले नहीं है और WHO उनकी सहायता के लिए मौजूद है। WHO की टीमें पहले से ही पूर्वी इटूरी प्रांत के बुनिया क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब तक इस प्रकोप में 1000 से अधिक संदिग्ध मामले और 238 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं। 17 मई को WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे महाद्वीपीय आपात स्थिति बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान के वर्ष 1850 से 1900 के स्तर से 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: रिपोर्ट में बताया गया है कि 86% संभावना है कि इस अवधि में कम से कम एक वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष 2024 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 के अंत तक अलनीनो परिस्थितियां बनने की संभावना है, जिससे 2027 में रिकॉर्ड गर्मी का खतरा बढ़ सकता है। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे अधिक वृद्धि पर गंभीर जलवायु प्रभाव की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चेम्सफोर्ड में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की है। दूसरा मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कैनेडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस के संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हो सकती है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को हराया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग।
4: विश्व दर्पण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 और 30 सेकंड हुए हैं। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो

0: तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी संजीव दर्शन ने।

तू मेरी आशिकी। इस फिल्म का गीत आपने सुना, अंकित तिवारी की आवाज़ थी, गीत और संगीत था राशिद खान का। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे शब्बीर अहमद ने और इसे संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह, मोहम्मद इरफान और सैम भट्ट की आवाज़ों में मर्डर 2 फिल्म का ये गीत।

मर्डर टू फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह, मोहम्मद इरफान और सैम भट्ट की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे सईद कादरी ने और संगीतबद्ध किया था मिथुन ने। आइए श्रोताओं अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, फिल्म का नाम बादल।

0: आज है नचले, इस फिल्म का गीत आपने सुना, सुनिधि चौहान की आवाज़ थी और पीयूष मिश्रा ने इस गीत को लिखा था। संगीत था सलीम सुलेमान का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बज रहे हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
4: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ

0: सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी सीईपीए समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाश।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: त्याग की खुशबू हो, मोहब्बत का पैगाम हो, हर दिल में इंसानियत और हर चेहरे पर मुस्कान हो। आई है बकरीद लेकर दुआओं की सौगात, हर घर में बरकत हो, हर रिश्ते में प्यार हो। नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज नमस्कार जमशेदपुर के साथ मैं इशरत। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को ईद उल अज़हा की ढेरों शुभकामनाएं। ईद उल अज़हा एक ऐसा त्यौहार जो हमें कुर्बानी, इंसानियत, भाईचारे और अल्लाह की इबादत का संदेश देता है। बकरीद सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि सब्र, भरोसे और त्याग की मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि अगर नीयत सच्ची हो तो हर कुर्बानी इबादत बन जाती है। जब इंसान अपने अहंकार, अपनी बुराइयों और अपने लालच को छोड़कर मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता अपनाता है, तभी इस त्यौहार का मतलब पूरा होता है।

सबसे अनमोल चीज़ यानी अपने बेटे तक को कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। और यही सीख आज भी हमें प्रेरित करती है कि जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो त्याग और भरोसा करना सीखें। और सबसे खूबसूरत बात, सिर्फ आप त्योहार का जश्न ना मनाएं बल्कि खुद की खुशी में गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी शामिल करें। यही तो इंसानियत है, यही असली ईद है। मित्रों, आज के दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं, वहां बकरीद हमें जोड़ना सिखाती है। ये त्यौहार कहता है कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो वही सबसे बड़ी इबादत है। तो दोस्तों, इस बकरीद अपने आसपास उन लोगों को ढूंढें जो उदास हैं या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके घर में उदासी है, ढूंढिए और उनकी मदद करिए ताकि वे भी जश्न मना सकें। निदा फाजली ने अपने इस शेर में क्या खूब कहा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली ने शेर के जरिए लोगों को ये सबक दिया कि इंसानियत, प्यार और नेकी से बड़ी कोई इबादत नहीं। बकरीद की एक बार फिर से आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। और अब लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

बजरंगी भाईजन, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना केके की आवाज में। इस गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने।

ठंडी हवाएं बर्फ से ढकी चोटियों और आसमान के को छूते हौसलों के बीच आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा खास दिन जो साहस, संघर्ष और इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। जी हाँ, आपने शायद सही समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे की, उस दिन की जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो हम इंसान धरती की ऊंची चोटियों को भी अपने कदमों से नाप सकते हैं। हिमालय की गोद में स्थित ये पर्वत सिर्फ बर्फ का एक पहाड़ नहीं बल्कि साहस और सपनों का प्रतीक भी है। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जाता है। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब साल 1953 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार इंसान ने कदम रखा। ये कारनामा किया था महान पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने। उनके इस कारनामे को सलाम। मित्रों, ये दिन सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने वालों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आज के युवा जो छोटी छोटी बातों से हताश हो जाते हैं, उनके लिए भी एवरेस्ट डे बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। मोबाइल और सोशल मीडिया के दुनिया में खोने के बजाय अगर हम और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, मेहनत करें और धैर्य रखें तो हम भी अपनी जिंदगी का एवरेस्ट जीत सकते हैं। एवरेस्ट डे के इस प्रेरणादायक अवसर पर सभी श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाएं।

फिल्म डोर का ये नगमा भी आपने सुना। शफकत अमानत अली की आवाज थी, मीर अली हुसैन ने इस गीत को लिखा था और सलीम सुलेमान ने संगीतबद्ध किया था। हौसलों से लबरेज ये गीत अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। हौसले की बात हो और सैनिकों का नाम जोड़ा ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। सरहदों पर खड़े वो वीर जवान जो तपती धूप में भी देश का तिरंगा ऊंचा रखते हैं, उन सैनिकों को दिल से सलाम। सैनिक केवल एक वर्दी नहीं, वो साहस, त्याग, अनुशासन और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल होता है। दोस्तों, देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने देश और उसके वीर जवानों के सम्मान में छिपी होती है। आज 29 मई एक ऐसा दिन जब दुनिया शांति, मानवता और सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। दोस्तों, हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर शांति कायम करने का काम करते हैं। ये सैनिक सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। उनतीस मई के इस खास अवसर पर हम उन सभी शांति सैनिकों को दिल से सलाम करते हैं और अब सैनिकों को समर्पित एक गीत सुनवा देते हैं।

0: सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाजों में अभी आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा, अनु मलिक का संगीत बद किया बॉर्डर फिल्म का ये गीत। श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से और अब समय हो चला है अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बातें करेंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे चंद खूबसूरत नगमे।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। मित्रों आज यानी 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो सोचिए अगर हमारा पाचन तंत्र सही ना हो तो शरीर की सारी ऊर्जा और खुशी फीकी पड़ जाती है। इसलिए हर साल 29 मई को लोगों को पाचन तंत्र के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आजकल हम लोग अपने खान पान का ध्यान कम रखते हैं क्योंकि जिंदगी की रफ्तार जो है ना वो काफी तेज हो गई है। हम अक्सर दिल दिमाग और चेहरे की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन पेट की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग फास्ट फूड, अनियमित खान पान, देर रात तक जागना, तनाव और पानी कम पीना, ये सारी चीजें हमारे अंदर बढ़ती जा रही हैं। ये सब हमारे पाचन तंत्र को कमजोर बना रहे हैं। एसिडिटी, गैस, कब्ज, अल्सर और लीवर की समस्याएं आज आम हो चुकी हैं। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हम घर के बने पौष्टिक भोजन को खाएं। हींग, अजवाइन, सौंफ, दही और छाछ, ये सब पाचन के अच्छे साथी हैं, तो इन्हें जरूर लें खाने में। दोस्तों स्वस्थ पेट सिर्फ बीमारी से बचाता ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी खुश रखता है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी सपनों को पूरा करने की ताकत मिलती है। और आपको ये भी बता दें कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है डायरिया की समस्या को नजरअंदाज न करें। इन्हीं प्रेरणादायक और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बाद अब समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो लीजिए सुनिए ये गीत।

फिल्म सौतन का ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी। सावन कुमार ने इस गीत को लिखा था और उषा खन्ना ने संगीतबद्ध किया था।

मित्रों, कल यानी 28 मई 2026 को उर्दू अदब की दुनिया से एक ऐसी आवाज खामोश हो गई जिसने मोहब्बत, दर्द, रिश्तों और इंसानियत को अपने अल्फाज में हमेशा जिंदा रखा। मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया। उनके जाने से मानव साहित्य और शायरी की दुनिया में गहरा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा शायर जिसकी गजलों ने लाखों दिलों को सुकून दिया, जिसके अल्फाज मोहब्बत की खुशबू बनकर हर दिल तक पहुंचे, आज वो शख्स हमारे बीच नहीं रहा। बशीर बद्र साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, बशीर बद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एहसासों की आवाज थे। उनकी शायरी में दर्द भी था, अपनापन भी, मोहब्बत भी थी और जिंदगी की सच्चाई भी। उनका एक मशहूर शेर याद आ रहा है दोस्तों, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि उर्दू अदब की एक शाम ढल गई है। उन्होंने रिश्तों को बड़ी सादगी से बयां किया, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दोस्तों, यही तो बशीर बद्र साहब की पहचान थी, सीधे दिल में उतर जाने वाले अल्फाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपने सफर की शुरुआत करने वाले बशीर बद्र साहब ने उर्दू गजल को नई पहचान दी। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज जब उनकी याद आ रही है तो उनका ये शेर भी दिल को छू जाता है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा

तो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शायर कभी मरते नहीं दोस्तों, वे अपने अल्फाजों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बशीर बद्र साहब भी अपनी गजलों, अपने अशार और अपनी मोहब्बत भरी आवाज में हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आइए इस महान शायर को खराज अकीदत पेश करते हुए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत और एहसासों से भरी ये गजल।

मित्रों, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हमारे दिलों में घर कर जाते हैं जो सिर्फ गीत नहीं रहते, वे हमारी यादें बन जाते हैं, हमारी तन्हाई के साथ ही बन जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गीतकार योगेश गौर को। उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नगमानिगार योगेश ने अपने शब्दों से जिंदगी को बहुत करीब से देखा, महसूस किया और फिर उसे गीतों में ढाल दिया। उनके लिखे गीत सीधे दिल में उतरते हैं क्योंकि उनमें दिखावा नहीं था बल्कि सच्चाई, मासूमियत और इंसानी एहसास था। दोस्तों, योगेश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनके अल्फाज बहुत आसान होते थे लेकिन असर बेहद गहरा छोड़ जाते थे। उन्होंने आम इंसान की भावनाओं को इतने खूबसूरत तरीके से लिखा कि हर व्यक्ति खुद को उन गीतों में महसूस करने लगा। गीतकार योगेश का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन उनके अल्फाजों ने पूरे हिंदुस्तान के दिलों में जगह बनाई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सिर्फ एक गीतकार को नहीं बल्कि उस जादूगर को याद कर रहे हैं जिसने शब्दों को आत्मा दी। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके शब्द कभी नहीं मरते।

योगेश्कर लिखा ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था मिली और तर्ज बनाई थी सचिन देव परवन ने। और अब चलते चलते मौसम का हाल बताते चलें। आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

0: Hood. आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को

बढ़ा दिया है। इससे पहले इसराइल एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मोहब्बत भी बड़ी दिलचस्प चीज है। जब होती है तो इंसान भीड़ में रहकर भी किसी एक के ख्यालों में खोया रहता है। कभी उसकी हंसी कानों में गूंजती है तो कभी उसकी बातें दिल को छू जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की हर राह उसी तक जाकर खत्म होती है। और सच कहें, जिसे सच्चा प्यार हो जाए उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह किसी का दिल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास, इसी प्यारी सी मोहब्बत और दिल की धड़कनों से जुड़ी बातों के साथ सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भावगीत भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दोस्तों, अधूरी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वे कभी ख़त्म नहीं होती। वो यादों में, बातों में और रातों की तन्हाइयों में हमेशा ज़िंदा रहती है। जब कोई अपने दिल की बात कह नहीं पाता तो उसे फिल्मी गाने उसकी आवाज़ बन जाते हैं, और यही वजह है कि ये गीत सीधे दिल को छू जाता है। तो चलिए, टूटे हुए दिलों की हल्की सी कसक, पुरानी यादों की नमी और अधूरी मोहब्बत के एहसास के साथ

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब चलते चलते हम अपने श्रोताओं को उन फिल्मों के नाम बताते चलें जिनके गीतों को अभी आप सुन रहे थे, नगीना, अर्पण, प्रेम रोग और हीरो। इसी के साथ भावगीत कार्यक्रम का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: FM के 102.4 MHz पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग वृंदावनी सारंग में विदुषी तनिमा ठाकुर का ख्याल गायन।

राग वृंदावनी सारंग में भी आप सुन रहे थे विदुषी तनिमा ठाकुर का ख्याल गायन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने ही वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants. Underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty, a bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said the order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. An India-bound oil tanker, Nissos Keros, has successfully crossed the Strait of Hormuz and is en route to Visakhapatnam with an expected arrival on the 3rd of next month. The Marshall Islands flagged vessel departed from Sharjah on the 21st of this month and was tracked in the northern Arabian Sea off India's west coast this morning. Iran's news agency reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy had facilitated the passage of 23 commercial vessels through the strait in 24 hours amid ongoing tensions over proposed transit fees by Tehran. Iran has proposed regulating maritime traffic via a new authority, while the United Nations maintains that imposing transit fees in international waters is illegal. The United States has called for free navigation through the strategic waterway. Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot has accepted the resignation of Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru today and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made, asking him not to take any executive decisions during this period. Siddaramaiah had submitted his resignation letter at the Lok Bhavan yesterday. In Uttar Pradesh, 6 workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur. The bridge, which stretches from Morakandar to Kandor village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. Rescue operations by NDRF and SDRF are underway. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal engaged with over 50 business and industry leaders at the round table hosted by the Consulate General of India in New York, in collaboration with the US-India Strategic Partnership Forum. In a social media post, Mr. Goyal said that during the round table, he highlighted India's strong growth story, reform-driven business environment, and expanding opportunities for global investors under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He further discussed ways to deepen India-US trade, investment, innovation, and supply chain partnerships for shared prosperity. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal rainfall over the country during the southwest monsoon season between June and September. Briefing the media on the second stage long-range forecast for monsoon season 2026 in New Delhi today, Secretary of the Ministry of Earth Sciences Dr. M. Ravichandran said the southwest monsoon seasonal rainfall over the country is likely to be 90% of the long period on average, with a model error of plus minus 4%. He informed that during the season, rainfall is most likely to be normal over northeast India and below normal over central, southern,

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज नगर विकास और पथ निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा। राज्य में चल रहे फ्लाईओवर, सड़क और शहरी आवास प्रोजेक्ट्स का लेंगे हिसाब किताब। निजी कानून व्यवस्था पर आज उच्च स्तरीय बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ कर रही है समीक्षा। अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सांसद निशिकांत दुबे ने दी बड़ी सौगात। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 24 घंटे मुफ्त चलेंगी 7 हाईटेक नमो एम्बुलेंस। राज्य में आंधी बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। भारतीय मौसम विभाग ने देश में इस साल जून से सितंबर के दौरान कम मानसून का जताया अनुमान। और राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों को मिलेगी हॉकी की ट्रेनिंग। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल स्तर पर शुरू होगा विशेष हॉकी प्रशिक्षण अभियान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नगर एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य भर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे फ्लाईओवर, नई सड़कों के निर्माण और शहरी आवास योजनाओं की प्रगति का हिसाब किताब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा करने के कड़े निर्देश देंगे। डेमोग्राफी चेंज की जांच के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि घुसपैठ से आदिवासियों की आबादी घट रही है।
1: यदि डेमोग्राफी बदल जाएगी तो राष्ट्र हित में, देश हित में और राजहित में निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो दुर्गामी परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए गृह मंत्री जी ने इसको जस्टिस जो हाई कोर्ट के चीफ कोर्ट के जो जस्टिस है उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाने का काम किया।
0: दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने इसे भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है।
2: आपके हाथ में 12 वर्षों से आपकी शासन है, बॉर्डर में तैनात कर दीजिए ना कि किसका प्रतीक्षा कर रहे हैं और कितने वर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ लगा दीजिए, नाला कोड़ दीजिए, नदी कोड़ दीजिए, गोली मार दीजिए, क्या जो मानसिक ड्रामा कर रहे हैं ये।
0: राज्य की डीजीपी तजाचा मिश्रा की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है। पद संभालने के बाद पहली बार डीजीपी राज्य के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ आमने सामने बैठक कर रही हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नक्सली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है। वे अपने संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस सेवा साल के 365 दिन और 24 घंटे पूरी तरह मुफ्त रहेगी। खास बात यह है कि इसका पूरा खर्च सांसद अपनी निजी कोष से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर और उनके सहयोगियों ने मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में रांची में बन रही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, 1000 बेड की अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल के निर्माण कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में वर्ष 2027 के अप्रैल मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा जो इसी साल जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए सरकार की ओर से आयोग में सदस्य सचिव की पोस्टिंग भी कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश से अप्रैल से फैले खसरे के खतरनाक प्रकोप को देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सरकार की गाइडलाइन के तहत सीमावर्ती संथाल, परगना और खासकर पाकुड़ जिले में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। पाकुड़ के जिला प्रतिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस के झा ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है।
3: तो हमारे यहाँ जो है सिविल सर्जन महोदय के निर्देशानुसार रैपिड रिस्पांस टीम जो है उस पर एक्शन लेते हुए जो भी एरिया प्रभावित एरिया था वहाँ स्पेशल हम लोगों का कैंप किया गया। कैंप के थ्रू जो है जितने भी प्रभावित बच्चे साथ ही साथ उसके जो संपर्क में आने वाले बच्चे सबको बचाव हेतु विटामिन ए का सॉल्यूशन पिला दिया गया है।
0: पलामू जिले के पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार की तेज रफ्तार कार कल रात अनियंत्रित होकर एक घर के आंगन में घुस गई। इस हादसे में वहां सो रहे ग्रामीण विनोद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और डॉक्टर को भी गंभीर चोटें आई हैं। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मिला जुला रुझान देखने को मिला। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 23,882 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,72,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर दो टर्फ लाइनें सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में मॉनसून 2026 के द्वितीय चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर मीडिया को जानकारी देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने बताया कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा औसतम दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है।
4: 2026 के मानसून ऋतु जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून से सितंबर 2026 में उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। ये सामान्य का अर्थ है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94-106%। इसके साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है।
0: राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हॉकी झारखंड ने एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था अब राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों को हॉकी की बारीकियां सिखाने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। इसके तहत स्कूल स्तर पर ही बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें अनुभवी कोच के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशना है ताकि वे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन कर सके।
5: इस जिला में यह अभियान और तेज करेंगे जिसमें कि छोटे

0: बच्चे से, मतलब 9 साल से हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे को एक हॉकी झारखंड का प्लेटफॉर्म पर ला कर रखेंगे कि उनको आगे कभी दिक्कत नहीं हो।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज नगर विकास और पथ निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा। राज्य में चल रहे फ्लाईओवर, सड़क और शहरी आवास प्रोजेक्ट्स का लेंगे हिसाब किताब। डीजीपी की कानून व्यवस्था पर आज उच्च स्तरीय बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ कर रही है समीक्षा। अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सांसद निशिकांत दुबे ने दी बड़ी सौगात। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 24 घंटे मुफ्त चलेंगी 7 हाईटेक नमो एम्बुलेंस। राज्य में आंधी बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। भारतीय मौसम विभाग ने देश में इस साल जून से सितंबर के दौरान कम मानसून का जताया अनुमान। और राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों को मिलेगी हॉकी की ट्रेनिंग। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल स्तर पर शुरू होगा विशेष हॉकी प्रशिक्षण अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:20 हुए हैं। आइए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो सखी शरद का आदाब नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
7: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
8: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
8: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।

फिल्म सिलसिला का ये गीत भी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था और शिवहरि ने संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे। इस

0: Akashvani at 90.
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

ब्रेक ख़त्म हुआ और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। अमित कुमार और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है और राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्रकाश मेहरा का लिखा लावारिस फिल्म का ये गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और अब समय हो चला है अंतराल का, अंतराल के बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: क्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।
1: ब्रेक खत्म हुआ और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आयशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी का ये गीत। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बाहर आने तक का ये नगमा। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है इस गीत।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाजों में अभी आपने सुना बाहर आने तक फिल्म का ये गीत। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, नुसरत फतेह अली खान ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म का नाम है

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत का यह सुरीला सफर अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब सुबह

0: of the outgoing Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made. He has also been asked not to take any executive decisions during this period. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed the need to adopt bhakti and meditation to attain inner and global peace. Addressing the 45th anniversary celebrations of the Art of Living Foundation International Centre in Bengaluru today, he said bhakti signifies dedication towards oneself, family, society, the nation and humanity as a whole. He said bhakti inspires people to live in harmony with others and with themselves. Quoting the teachings of Sri Sri Ravi Shankar, he said, "The art of living lies in embracing change and enjoying every moment of life." He added that Dhyan, Gyan and Gan enrich both life and personality. Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has congratulated the government of Odisha, Intel and 3DGS on signing a memorandum of understanding to bring substrate manufacturing technology to India. Mr. Vaishnav said this will further advance the semiconductor ecosystem in India. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jayashankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary today. In a social media post, the Vice President said the former Prime Minister was a visionary leader and a tireless advocate for farmers who dedicated his life to the welfare of the agrarian community and the upliftment of rural India. The Lok Sabha Speaker underlined that the entire life of the former Prime Minister was dedicated to the upliftment of the country's farmers, labourers and villages. Mr. Shah noted that Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh played a pivotal role in strengthening democratic values from the freedom struggle to the emergency period. At least six workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur district of Uttar Pradesh. The bridge, which stretches from Molkandar to Kandor village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. NDRF and SDRF started rescue work and operations are still underway. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mohapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mohapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and the adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 meters, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Anupam wins bronze in women's 100 meter at Under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
2: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
3: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर-18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। PM सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान।

राज्यों में लू की संभावना और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: गुमराह फिल्म का ये गीत भी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिर के बोल थे और रवि का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

शकील बदायूनी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था उम्मीद और तर्ज बनाई थी रवि ने। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरूह के बोल आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का ये गीत। शब्द रचना थी इंदिवर की और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत और इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। उन्होंने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की।
1: आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जाम देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए व्यवस्थित कर दिया था। यह भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी सहमति की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री शुक्ला ने राज्यपाल को राज्य के अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने झारखंड में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की दिशा में पहल किए जाने का भी आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन जारी है। कांग्रेस चाहती है कि 2 सीटों में से 1 सीट गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में उसे मिले। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी आज रांची पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे।
2: चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के अगले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में दे सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में तो झारखंडी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन में तुष्टिकरण, कमीशन खोरी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियों से खुलासे के बाद केवल इकरारनामा रद्द करना सरकार की जवाबदेही से बचने का प्रयास है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह समेत संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, प्राथमिकी दर्ज करने और पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी है। नवीन केडिया ने अदालत में याचिका दाखिल कर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका अस्वीकार कर दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्य।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
1: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
2: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें

0: कांटे नहीं होते
1: जी।
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800044559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालुबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
6: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालुबार में भी दिखाएंगे।
7: जी,
8: हम तैयार हैं।
6: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
9: वो क्या साहब?
6: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को

0: पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर वन और यह नंबर टू।
1: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
2: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
2: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
2: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
3: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। चार घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
3: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली। आयो महाकाली।
4: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
4: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
3: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
4: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
3: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
4: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
5: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
4: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
4: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
4: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
6: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं सितार पर बजाया कल

कल्याणी रॉय का सितार पर बजाया बाउल धुन अभी आप सुन रहे थे, और अब आइए सुनिए कल्याणी रॉय का सितार पर बजाया भाटिया।

कल्याणी रॉय का सितार पर बजाया भटियाली धुन भी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब सुबह

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं सोम राय तिर्की और साथियों के स्वर में उरांव लोकगीत।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आइए सुनते हैं सोमराय तिर्की और साथियों के स्वर में उरांव में ये अगली प्रस्तुति।

0: सोमराय तिर्की और साथियों के स्वर में गाए उरांव लोकगीत के साथ ही झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब सुबह

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। उन्होंने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून से BLO घर घर जाकर मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

0: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी आज रांची पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन में तुष्टिकरण, कमीशनखोरी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियों के खुलासे के बाद केवल इकरारनामा रद्द करना सरकार की जवाबदेही से बचने का प्रयास है। उन्होंने पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जाँच कराने की मांग की है। जमशेदपुर में टाटा लीज नवीकरण को लेकर विस्थापित आदिवासी और मूलवासी परिवारों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि टाटा कंपनी के लीज नवीकरण से पहले विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है बज्म कव्वाली। फनकार हैं यूसुफ आजाद, शाहिदा बानो और रानी रूपलता। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश।

इश्क़ ले जाए जिधर ये तो उधर जाता है, इश्क़ सूली पे चढ़ा है तो ये चढ़ जाता है, इश्क़ तूफान में उतारे तो उतर जाता है, दिल ने सच्चाई मोहब्बत की भी साबित कर दी, आग में कूद पड़ा, आग को गुलजार किया, फिर भी

कव्वाली आप सुन रहे थे, कलाकार थे यूसुफ आजाद शाहिदा बानो जयपुरी और रानी रूपलता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहब्बतें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना उद्भव मनोहर शेट्टी, ईशान श्वेता पंडित, सोनाली भाटवडेकर, प्रीता मजूमदार की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन किया था जतिन ललित ने।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीतबद्ध किया था इसे जतिन ललित ने और गीत लिखा था समीर अंजान ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

तेरे नाम, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण, कमाल खान, के अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन किया था हिमेश रेशमिया ने। और इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम आर्क, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून से BLO घर घर जाकर मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के स्टेट चीफ और 10 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी अमृत होरो उर्फ मिचो उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया है। रांची के SSP राकेश रंजन ने बताया कि अमृत होरो अपने साथियों के साथ किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी है। नवीन केडिया ने अदालत में याचिका दाखिल कर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका अस्वीकार कर दी।

0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पीआईबी और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने और जागरूकता फैलाने की शपथ ली। कार्यक्रम में तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक कर तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। कार्यक्रम युवाणी के लिए करें जरा सा इंतजार।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार, आज 29 मई 2026 है, शाम के 5:03 हो रहे हैं। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं युववाणी FM 102.4 MHz पर। जमशेदपुर की शाम का मतलब सिर्फ सूरज का ढलना नहीं है, शहर का दूसरा रूप होना है। इसी शहर की शाम को और हसीन बनाने, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने और इस वक्त को खास बनाने में मैं कामाक्षी सिंह आपके साथ हूँ अगले आधे घंटे तक। कुछ बातें और कुछ गाने, बस यही है आज की शाम का वादा। एक पल के लिए सोचिए, इतिहास, ये लफ्ज जुबान पर आते ही मन में क्या तस्वीर बनती है। मैंने अपने कुछ युवा मित्रों से यह सवाल किया, उनका अलग अलग जवाब था। कुछ युवाओं के लिए इतिहास धूल से ढका हुआ अध्याय है, उनके लिए इतिहास एक बंद किताब है, स्कूल की परीक्षा के साथ जिसका रिश्ता खत्म हो गया हो। उनके नज़रिए में इतिहास गुजरे हुए साल का कैलेंडर है, जिसे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं। कुछ युवाओं के लिए यह बहसों का मंच है, उनके लिए इतिहास सत्य की तलाश नहीं, तर्क वितर्क का जरिया है। और कला एवं इतिहास के विद्यार्थी, उनके लिए तो इतिहास खुला हुआ पत्र है, वे उसमें तिथि नहीं इंसान की कहानी पढ़ते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन हो या एक आम सैनिक का शौर्य, वे समझते हैं कि इतिहास मौन नहीं, इतिहास बोलता है, बस उसे पढ़ने का नज़रिया चाहिए। जबकि कुछ लोगों के लिए इतिहास का उनके आज से कोई वास्ता नहीं है। नौकरी, सपने, रोज़मर्रा की उलझनों में 1857 का विद्रोह उन्हें बहुत दूर का मोड़ लगता है। मैं चारों दृष्टिकोण को सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हमने इतिहास को सही तरह देखा ही नहीं। मेरे लिए इतिहास न तो सिर्फ अतीत का लेखा जोखा है, ना ही केवल बहस का विषय। मेरे लिए इतिहास दिशा दर्शक है, इसलिए इतिहास को न सर आँखों पर बिठाना है, न ही नज़रअंदाज करना है, उसे समझना है दर्पण की तरह। तो क्या इतिहास केवल किताबों तक ही सीमित है? शायद नहीं। इतिहास किताबों से निकल कर हमारी सोच, हमारे फैसलों में दिखता है। तो चलिए अब सुनते हैं आज की शाम का पहला गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म दिल्ली सिक्स का गाना मसक्कली, जिसे आवाज़ मोहित चौहान ने दिया था। इस गाने के संगीतकार ए आर रहमान और गीतकार प्रसून जोशी थे।

युवा हैं, हमारे हाथ में सबसे तेज औजार है टेक्नोलॉजी। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकती है? जवाब हाँ भी है और ना भी है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद कुछ नहीं करती, हम करते हैं। टेक्नोलॉजी हवा का हिसाब रख सकती है, नदी का रंग पढ़ सकती है और दुनिया के सारे पेड़ भी गिन सकती है। लेकिन केवल गिनने से जंगल हरे नहीं होते, रंग पता करने से नदी साफ नहीं होती और हिसाब रखने से हवा नहीं बदल सकती। बदलाव तब आता है जब हम उस हिसाब को देखकर यह स्पष्ट करें कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी बता सकती है कि कौन सी फैक्ट्री धुआं छोड़ रही है, पर उस फैक्ट्री का सामान हमें इस्तेमाल करना है या नहीं यह हम तय करते हैं। टेक्नोलॉजी दिखा सकती है कि समंदर में प्लास्टिक कहाँ जमा है, पर प्लास्टिक का यूज़ बंद करना है या नहीं वो हम तय कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी नदी के पानी में कितना पोल्यूशन है वो भी बता सकती है, मगर पोल्यूशन कम करना हमारे हाथ में है। तो हमें यह खुद ही चूज करना है कि टेक्नोलॉजी जंजीर है या जरिया। टेक्नोलॉजी में ताकत है धरती को पढ़ने की, लेकिन धरती को बदलने की ताकत सिर्फ हमारे फैसलों में है। टेक्नोलॉजी औजार है, जादू नहीं, और औजार चलाने वाले हमेशा जिम्मेदार होते हैं, यानी हम।

आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुम का गाना पंछी सुर में गाते हैं, जिसे आवाज़ उदित नारायण ने दिया था। इस गाने के संगीतकार नदीम श्रवण और गीतकार समीर थे।

जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कई बार इन्हीं फैसलों और उम्मीदों का बोझ जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे मानसिक सुकून को छीन लेता है। जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, उसी परिवेश में हम सब कुछ पाने की चाह, परफेक्ट दिखने का प्रेशर, पीछे रह जाने का डर अनजाने में ही तनाव के बीज बो देता है। अब हम बातें करेंगे हमारे देश की उस नींव की जो भीतर से थोड़ी थकी हुई है। हम बात करेंगे युवाओं में बढ़ते तनाव और अवसाद यानी स्ट्रेस और डिप्रेशन की। युवा होना सपने देखने की उम्र होती है, लेकिन आज की इस अंधाधुंध दौर में सपने कहीं बोझ बन गए हैं। कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस के इस युग में एक दबी हुई चीख है जो अक्सर कमरों के बंद दरवाजों के पीछे रह जाती है। हमें समझना होगा कि मन का बीमार होना कोई गुनाह नहीं है। डिप्रेशन किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप बहुत समय से मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे थे। हमें सिखाया जाता है कि पेशेंस यानी धैर्य ही हर समस्या का हल है, मगर मेरा यह मानना है कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ को गंभीरता से लेते हैं, वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, धैर्य बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में हमें धैर्य से ही काम लेना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन में हमें केवल धैर्य की ही नहीं, एक थेरेपिस्ट या काउंसलर की ज़रूरत होती है। बहुत से युवा रीच आउट नहीं कर पाते और अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को महत्व नहीं दे पाते, क्योंकि अभी तक समाज में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज नहीं किया गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अब कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों के व्यवहार और समस्याओं को समझकर अब एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं। समाज में धीरे धीरे ही सही मगर बदलाव आ रहा है। तो मेरे युवा मित्रों, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करना या मदद मांगना कोई शर्मनाक बात नहीं है। ऐसे वक्त में खुद को अकेला या गलत नहीं समझना चाहिए। अपने करीबियों से बात करके इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। हाँ, लड़ाई मुश्किल है, पर जीतना मुमकिन है। रोज़ हज़ारों युवा काउंसलिंग लेके, बातें करके, अपने मन को समझ कर वापस अपनी ज़िंदगी में मुस्कान ला रहे हैं। आप भी ला सकते हैं। अंत में यही कहूँगी कि हर पतझड़ के बाद बसंत का आना निश्चित है। यह तूफानी मौसम भी टल जाएगा।

तो चलिए अब आज के मौसम का हाल जानें। आज जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा है और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है। आज सुबह में बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली। दिन भर बादल छाए रहे, शाम में भी बारिश होने के आसार हैं। आइए अब आईपीएल अपडेट के बारे में जानें। आज 29 मई को क्वालिफायर 2 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से। जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ फाइनल्स खेलेगी 31 मई को। अब कुछ देश विदेश की खबरें। अमेरिका और ईरान में महीनों के तनाव के बाद दोनों देश 60 दिनों के सीज फायर पर राजी हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न राज्यों में भयंकर चक्रवाती आंधी, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को 31 मई 2026 को संबोधित करेंगे। यह प्रसारण रविवार सुबह 11 बजे शुरू होगा। आइए आज की शाम को इस प्यारी सी नगमे के साथ खत्म करें।

आप सुन रहे थे फिल्म साथिया का गाना साथिया, जिसे आवाज सोनू निगम ने दिए थे। इस गाने के गीतकार गुलजार और संगीतकार एआर रहमान थे। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं कामाक्षी सिंह अब आपसे आज्ञा चाहूंगी। आप सुनते रहिए युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जमशेदपुर के FM 102.4 MHz पर। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कल

इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हम आप लोगों को मानसिक रोग से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने और किस तरह से निरोग रहना है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे। साथ ही कुछ फिल्में गीतों के माध्यम से हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विषय पर भी जानकारी देंगे। पर इन सब से पहले आइए बात करते हैं कि हमारे श्रमिक भाइयों के लिए उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, उसके और एक नज़र डालते हैं।

0: श्रमिक मित्रों, आज का समय कौशल यानी कि स्किल का समय है। मेहनत करने वाले श्रमिक हमारे देश की असली ताकत हैं। निर्माण कार्य हो, फैक्ट्री, बिजली, मशीन, खेती, परिवहन या सेवा का क्षेत्र हो, हर जगह श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन बदलती तकनीक और बढ़ती स्पर्धा के दौर में केवल मेहनत से ही काम नहीं होता, बल्कि प्रशिक्षण की भी यानी कौशल की भी बहुत जरूरी हो गई है। इस आवश्यकता को देखते हुए सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रमिकों के लिए कई शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए कोर्स चलाए गए हैं। ये कोर्स कम समय में रोजगार योग्य कौशल सिखाते हैं और आय बढ़ाने में भी मदद करते हैं। मित्रों, इन कोर्सों की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने की अवधि के में ये पूरे हो जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। आज कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कार्य, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर बेसिक, सिलाई एवं फैशन डिजाइनिंग, ड्राइविंग का जिन्हें शौक है वो इस क्षेत्र में भी अपना सीख कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, मशीन ऑपरेटर, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी एवं वेलनेस के क्षेत्र में, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में, ई रिक्शा रिपेयरिंग इत्यादि। साथियों, इन कोर्सों का लाभ केवल नौकरी तक ही पाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई लोग प्रशिक्षण के बाद स्वयं का भी छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर देते हैं और बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। कोई मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल रहा है, तो कोई सिलाई सेंटर चला रहा है, तो कई इलेक्ट्रिकल सर्विस देकर अच्छी आमदनी कमा रहा है। सरकार की कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI भी इन श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। आज डिजिटल माध्यम से भी सीखने के अवसर बढ़े हैं। मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर लोग नई तकनीक सिखा रहे हैं और इससे गांव और छोटे शहरों के श्रमिकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। प्रिय श्रोताओं, कौशल विकास केवल रोजगार नहीं देता, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। जब किसी व्यक्ति के पास हुनर होता है तो वो परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। इसलिए हर श्रमिक को समय के साथ नई तकनीक और नए कौशल सीखते रहना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई प्रशिक्षण केंद्र हो तो उसकी जानकारी अवश्य लें। अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कुशल हाथ ही मजबूत भारत की पहचान है। श्रोताओं, इन बातों के बाद कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए हम आप लोगों को डॉक्टर दीपक कुमार गिरी से ली गई भेंटवार्ता सुनवाते हैं। विषय है मानसिक रोग की भ्रांतियों को दूर करें और रहें निरोग। इनसे बातचीत कर रही हैं मंजू कुमारी।
1: श्रोताओं, आजकल बदलती जीवन शैली, हमारा खान पान सब तेजी से बदल रहा है। हमारी बदलती लाइफस्टाइल के साथ तनाव भी हम पर हावी होने लगा है, जिस वजह से आज लोग मानसिक रोग के शिकार होने लगे हैं। वैसे जब मानसिक रोग की बात आती है तो लोगों के बीच इसे लेकर कई तरह की गलत धारणाएं होती है। उनकी नज़र में ये सिर्फ वहम या एक तरह का अंधविश्वास है। लोगों की इसी धारणा का खामियाजा मानसिक रोगियों को उठाना पड़ता है। उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने और सही जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर के जाने माने डॉक्टर दीपक कुमार गिरी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर दीपक से आज हम जानेंगे कि मानसिक रोग की भ्रांतियां दूर कर हम कैसे निरोग रह सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन शुरुआत इन बातों से करते हैं कि मानसिक रोग क्या है।
2: देखिए, जैसे शरीर बीमार पड़ सकता है, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी बीमार हो सकता है। और इन बीमारी या इन रोगों में व्यक्ति महसूस करने की, सोचने की, कार्य करने की, संबंधों का आनंद उठाने एवं तनाव का सामना करने की क्षमता इसमें नकारात्मक रूप से या नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है।
1: अच्छा।
2: इसे हम जब इस तरह की चीजें होती हैं तब हम इसे कहते हैं कि यह मानसिक रोग से प्रभावित है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे ये जानेंगे कि मानसिक रोग के लक्षण क्या है, आमतौर पर लोग कैसे पहचान सके कि मानसिक रोग है।
2: देखिए, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि यह अमुक इंसान मानसिक रूप से प्रभावित है। तो इसमें सबसे पहले तो यह है कि उदासी की भावना, यह अगर उदासी दिन भर रहती है या ज्यादातर समय उदास रहता है जिसकी वजह से वह काम करने की क्षमता प्रभावित करती है तो यह मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। उसी तरह बेचैनी, घबराहट, अचानक से दिल का धड़कन बढ़ जाना, अचानक से बहुत ज्यादा घबराहट होना, यह भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में बहुत सफाई या बहुत चेक करने की आदत होती है, जैसे बार बार हाथ धोना या बार बार ताला चेक करना या बार बार गैस का स्टोव बंद किए हैं कि नहीं वह देखना, यह भी मानसिक रोगों का लक्षण हो सकता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से सोचने या दैनिक कार्यकलाप करने में कठिनाई हो जाती है, फिर बार बार गलत विचार या अतार्किक विचार का आना, या फिर ऐसी चीजें सुनाई पड़ना या ऐसी चीजें दिखाई पड़ना जो वास्तविकता में होती ही नहीं है, यह भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। फिर बार बार आत्महत्या के बारे में विचार आना या आत्महत्या संबंधित आचरण करना, यह भी मानसिक रोग का लक्षण है। क्रोध, भय, चिंता, अपराध बोध या उदासी या खुशी की लगातार अनुभूति या डॉक्टर की सलाह के बिना औषधियां लेना या ऐसी चीजों का सेवन करना जो नशे से संबंधित रखता हो, या बहुत ज्यादा अल्कोहल हुआ या बहुत ज्यादा तंबाकू, ये सब का सेवन करना, यह भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है।
1: यानी कि ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती है कि इंसान मानसिक रोग की तरफ आगे बढ़ रहा है।
2: जी,
1: तो आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि लोग मानसिक रोग को बहुत हल्के में लेते हैं, अगर कुछ बदलाव इंसान में आता है तो लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल सी बातें हैं, तो लोग इसको सीरियस होकर नहीं लेते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए, सीरियस होकर नहीं ले रहे हैं या बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मानसिक रोगों को लेकर लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं या बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: लोगों को लगता है कि यह मानसिक रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, या वैसा अमुक इंसान कमजोर दिल वाला है तो थोड़ा सा बात करेगा, मूवी देख लेगा तो वो मानसिक रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यह भी बाकी बीमारियों की तरह ही है, बाकी बीमारियों की तरह इसकी उत्पत्ति होती है और बाकी बीमारियों की तरह ही इसका भी इलाज होना चाहिए, क्योंकि जितने शीघ्र आप इलाज कराएंगे उतनी जल्दी इसे ठीक होने की संभावना उतनी अच्छी हो सकती है। तो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है।
1: हमें कुछ भी बदलाव खुद में दिखाई दे, इस तरह के लक्षण दिखाई दे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए।
2: हाँ।
1: जी, आमतौर पर क्या खास वजह होती है मानसिक रोग के?
2: मानसिक रोग के कई तरह के कई वजह हो सकता है, मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं मानसिक रोगों के, जिसमें सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स या हेरिडिटरी। अगर घर में किसी को मानसिक रोग है तो बच्चों में होना या दूसरे जनरेशन में होने की संभावना और बढ़ जाती है। कई बार होता है कि आदमी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है वह इसका कारण हो सकता है, किस प्रकार के एनवायरमेंट, उसका वातावरण कैसा है, किस प्रकार के माहौल में वह बड़ा हो रहा है, वह भी मानसिक रोग के कारण बन सकते हैं। फिर एक बहुत मुख्य कारण है नशा। अगर किसी भी तरह का नशा वह लेता है तो कोई भी नशा मस्तिष्क के लिए सुरक्षित नहीं है। मस्तिष्क
1: को नशा की वजह से भी इंसान मानसिक रोगी हो सकता
2: है। हाँ, मानसिक रोगी हो सकता है। और आज के दिनों में एक मुख्य कारण, एक मुख्य समस्या वो स्ट्रेस या तनाव है। अगर मनुष्य अत्यधिक तनाव के बीच जी रहा है, वो तनाव को प्रबंध नहीं कर पा रहा है, तनाव को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तब भी बहुत सारी मानसिक बीमारियों के लक्षण उसमें देखे जाते हैं।
1: जी, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग में बदलाव दिखाई देता है, लोगों को ये लगता है कि थोड़ा भी डाउट होता है कि वो मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने में हिचकते हैं, शर्माते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: जैसे कि पहले भी बताया, ये सारी वजह है क्योंकि इसकी इससे जुड़े हुए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि ये इलाज अपने ही हो सकता है या फिर लोग क्या कहेंगे। अगर हम मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, और कई बार हम लोग देखते हैं इस वजह से बीमारी काफी पुरानी हो जाती है या काफी लंबे समय तक खींच जाता है, तब इलाज में और कठिनाई आने लगती है।
1: यानी कि समय रहते हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। हाँ। और वैसे अगर देखा जाए तो इस रोग का इलाज कितने समय तक चलता है?
2: देखिए, अगर पहली बार हो रहा है या पहला एपिसोड है तो जनरली हम लोग 6 से 9 महीने तक दवाई देते हैं, ठीक होने के बाद।
1: अच्छा।
2: भी मरीज ठीक होने के बाद भी 6 से 9 महीने तक दवाई चलती है और फिर उसको धीरे धीरे हम लोग दवाई को कम करके बंद करते हैं। लेकिन अगर बहुत गंभीर बीमारी है या बार बार हो रहा है, दवाई बंद करने के बाद फिर से हो जा रहा है और इस तरह रिपीटेडली हो रहा है, एपिसोडिक है, तो इलाज सब फिर लंबे समय तक चलता है। कभी कभी वो 2 साल या 5 साल भी तक चल सकता है और कुछ केसेस में यह काफी समय तक या जीवन पर्यंत भी देना पड़ता है।
1: यानी कि डॉक्टर जो हमें कोर्स बताते हैं उस कोर्स को पूरा करना चाहिए, उस कोर्स को पूरा करके बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं।
2: एकदम सर
1: जी। और साथ ही हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, और अपने शर्म को निकाल के हमें डॉक्टर के पास हर हाल में जाना चाहिए। हाँ। डॉक्टर दीपक, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कुछ धारणाओं की, लोगों के मन में मानसिक रोग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है लोगों के मन में?
2: देखिए, ये जो धारणा या भ्रांतियां हैं, गलत धारणा है, वो बहुत ही समुदाय में काफी फैली हुई है, समुदाय में यह बहुत ही जड़ पकड़ी हुई है। अच्छा। और इसकी वजह से कई बार हम लोग देखते हैं कि इसके निदान होने में या उपचार होने में बहुत देरी हो जाती है। तो इसमें सबसे जो प्रमुख है कि ये लगता है लोगों को कि ये मानसिक रोग किसी बुरी आत्मा या अलौकिक शक्ति के कारण होती है। तब जब लोगों में यह धारणा होती है तो लोग बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा, ओझा गुनी या फिर ऐसे लोगों के पास जाकर वहाँ इलाज करने में कोई फायदा नहीं होता है, और जितनी पुरानी होती है ट्रीटमेंट हम लोगों के लिए फिर उतना ही दिक्कत हो जाती है, उतनी मुश्किल होती है, साथ ही साथ मरीज को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ये एक सबसे मुख्य जो मिथ है या भ्रांति है वह समाज में देखी जाती है, क्योंकि ये मानसिक बीमारी भी जैसा कि बताया और सब बीमारियों की जड़ ही है। इसके भी बायोलॉजिकल कारण है, जैविक कारण है, सामाजिक कारण है, या फिर मनोवैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से मानसिक रोग होते हैं।
1: यानी कि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
2: हाँ।
1: और कौन कौन सी भ्रांतियां और कौन कौन सी धारणाएं लोगों के मन में है?
2: एक जो बहुत ही कॉमन धारणा हम लोग देखते हैं कि लोगों को लगता है कि मानसिक रोगों का इलाज नहीं किया जा सकता है, यह भी एक धारणा गलत है। मानसिक बीमारी भी बाकी जैसे बीमारियों की तरह ही ट्रीटेबल है, इनका इलाज संभव है, इनके लिए तरह तरह की दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन अगर यह उपयुक्त इलाज उपयुक्त समय तक करें तो मरीजों में ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। और बहुत ज्यादा भी रहती है। फिर एक धारणा लोगों के मन में यह है कि विवाह कर देने से मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं, तो यह भी एक गलत धारणा है, क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी है। अगर मानसिक रोगी अगर ठीक नहीं है, जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं है, और अगर आप उसकी विवाह करा देते हैं तो और आप उसमें तनाव पैदा कर देते हैं
1: और परेशानी
2: बढ़ जाती है। तो यह भी एक धारणा लोगों के बीच है कि अगर किसी को ऐसा होता है तो उसकी आप विवाह करा दो, जो कि गलत है। एक और धारणा जो हम लोग देखते हैं, भ्रांति देखते हैं, उसमें लोगों का ये लगता है कि मानसिक बीमारी जिनको होती है वो बहुत डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, हिंसक होते हैं, तो इनको अस्पताल में भर्ती करके रखना चाहिए, लेकिन यह भी एक धारणा गलत बनी हुई है। ज्यादातर मानसिक बीमारियों का इलाज घर में ही रहकर या समुदाय के बीच में ही रखकर किया जा सकता
1: है, यानी कि कहा जा सकता है कि परिवार के प्यार से वो ठीक हो सकता है।
2: हाँ, एकदम से। तो बहुत कम ही ऐसे केसेस होते हैं जिसे भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है।
1: जी, और भी कुछ धारणाएं हैं जो लोगों के दिल में जगह बनाई हुई है?
2: कुछ धारणाएं तो हैं दवाइयों को लेकर भी, जैसे लोगों को लगता है कि मानसिक रोगों के लिए जो चिकित्सक जो दवाइयां देते हैं वो नींद की दवाइयां होती हैं, या किसी को लगता है कि उससे लत पड़ जाता है या उससे शरीर के बाकी अंग खराब हो सकते हैं, तो यह भी एक गलत धारणा है। नींद की दवाइयां दी जाती है लेकिन एक तय समय तक, लंबे समय तक नहीं दी जाती है। और नींद के दवाइयों के अलावा भी एक बहुत सारे ग्रुप है दवाइयों की जो हम लोग इलाज में उनका उपयोग करते हैं, तो ये सारी दवाइयां बहुत सेफ हैं, और समय समय पर दवाइयों से शरीर में कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं इसकी भी जांच की जाती है, ताकि यह पता चल सके कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे बाकी दवाइयों के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसी तरह इसमें भी है, और ये कोई लत लगने की दवाइयां नहीं दी जाती है, मरीज को ठीक होने की दवाई दी जाती है। होता क्या है कि मरीज समय जो उनको एक कोर्स दिया गया या जो बताया गया कि उस समय तक आपको लेना है, उसके बीच में अगर छोड़ देते हैं तो बीमारी फिर उत्पन्न हो जाती है। तो लोगों को यह लगता है कि दवाई खा रहे थे तो ठीक थे, बंद कर दिए तो हो गया, लेकिन पूरी तरह या पूरा कोर्स वो फॉलो नहीं किए या पूरा कोर्स पूरा नहीं किए, इस वजह से हो जाती है। तो यह भी भ्रांति है जो काफी ज्यादा लोगों में फैली हुई है।
1: तो डॉक्टर साहब, यानी कि इन भ्रांतियों को तोड़ने की जरूरत है।
2: हाँ
1: जी,
2: अगर इन भ्रांतियों को हम लोग तोड़ें तभी इन जो स्टिग्मा है, जो इन बीमारियों के प्रति स्टिग्मा है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होती है मानसिक रोगियों के प्रति, उस चीजों को हम लोग रोक सकते हैं।
1: जी, और ये बहुत जरूरी भी है।
2: बहुत जरूरी भी है।
1: वैसे डॉक्टर दीपक, कैसे बच सकता है कोई भी इंसान मानसिक रोग होने से?
2: देखिए, जिस तरह हम लोग अपने शरीर के फिटनेस पर ध्यान देते हैं, उसी तरह हम लोगों को मस्तिष्क के फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए।
1: जी, बिल्कुल।
2: और इसमें सबसे जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो फॉलो किया जाए
3: जी।
2: समय से सोना, समय से उठना, डेली एक्सरसाइज, क्योंकि व्यायाम से देखा गया, एक्सरसाइज से देखा गया है कि वह शरीर के लिए भी जितना फायदेमंद है उतना मस्तिष्क के लिए भी। जैसा पहले भी बताए, किसी भी तरह के नशे से वो दूर रहना है, क्योंकि कोई भी नशा मस्तिष्क के लिए फायदेमंद नहीं है। फिर स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने प्रॉब्लम को शेयर करना लोगों के साथ, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों

0: से संबंध स्थापित करना यह बहुत जरूरी है। फिर अगर आप कोई स्ट्रेस में, कोई तनाव में है, तो उसके प्रॉब्लम के बारे में लोगों से डिस्कस कीजिए। अभी जैसे कोरोना के समय में बार बार योगा के बारे में या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या मेडिटेशन के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि अब जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे आपके बॉडी का भी इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत रहेगा और आपका मस्तिष्क भी उतना ही सही काम करेगा। तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर और मन दोनों के ही बारे में, दोनों को ही स्वस्थ रखने के बारे में सोचें।
1: जी, हमारा दिमाग स्वस्थ तो हम स्वस्थ, और वैसे भी योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज जो है वो हर बीमारी को दूर रखने में हमारी मदद करता है। तो मानसिक रोग से अगर हम दूर रहना चाहते हैं तो इन चीजों को अपने जीवन में जरूर जगह देनी चाहिए। डॉक्टर दीपक, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही अहम और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को दिया। अब चलते चलते हमारे श्रमिक श्रोताओं को मानसिक रोग से जुड़ी, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने से जुड़ी क्या कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे आप?
0: मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी इस तरह का लक्षण जो मानसिक रोग से संबंध रखता हो, अगर अपने में या अपने प्रियजन में दिखें, तो बिना देर किए बेहिचक आप किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतना ठीक होने की संभावना और एक समाज में अपने आप को पुनः स्थापित करने की संभावना उतनी ज्यादा ही बढ़ जाएगी।
1: जी बिल्कुल।
0: और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी नशे से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी नशा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है और वो बुरा प्रभाव देता है।
1: जी, डॉक्टर दीपक कुमार गिरी, आप हमारे स्टूडियो में आए और मानसिक रोग की भ्रांतियां दूर करे रहे निरोग, इस विषय पर इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मानसिक रोग की भ्रांतियां दूर करें और रहें निरोग, इस विषय पर डॉक्टर दीपक कुमार गिरी से ली गई भेंटवार्ता आप श्रोता सुन रहे थे। इनसे बातचीत कर रही थी मंजू कुमारी। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी के।

इस गीत के बाद श्रोताओं आइए हम बात करते हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जो माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दोस्तों, माँ बनना हर महिला के जीवन में एक खास और संवेदनशील समय होता है। इस दौरान सही पोषण, पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सके। अब सवाल उठता है कि कितनी मिलती है इस योजना के अंतर्गत सहायता। इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को कुल 5,000 की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा यदि महिला जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव कराती है तो उसे अलग से भी लाभ मिलता है। हमारे देश में कई बार आर्थिक कारण से गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिससे मां और बच्चे दोनों की सेहत पर असर पड़ता है। यह योजना महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आराम करने और पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभुक कौन हो सकते हैं? तो वे हो सकते हैं जो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती माताएं हैं या महिलाएं हैं। पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाएं जिनका पंजीकरण आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में हुआ हो। आवेदन के लिए भी प्रक्रिया बहुत सरल है। आवेदन अपने नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और मातृत्व से जुड़े दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसमें मिलने वाली जो राशि होती है वो सीधे लाभार्थी के बैंक में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे कि पारदर्शिता बनी होती है। दोस्तों, ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि ये एक संदेश भी है कि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य हमारे समाज की प्राथमिकता है। अगर आपके परिवार या आसपास कोई महिलाएं गर्भवती हैं तो उसे इस योजना के बारे में जरूर बताएं। समय पर पंजीकरण कराकर वह इस योजना का पूरा लाभ उठा सकती है। और अंत में हम यही कहेंगे कि स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु, यही है खुशहाल भारत की नींव। और अब आइए सुनते हैं एक और फिल्मी गीत।

शैलेंद्र के लिखित गीत को संगीत से सवारा था एस डी बर्मन ने। फिल्म थी गाइड और आवाज लता मंगेशकर की थी। इस गीत के साथ ही आज का कल कारखाने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कल तक के लिए संजय प्रसाद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल कारखाने FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। संध्या के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिका

0: याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय अनुजा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700

0: 01-4242 पर
1: 8700-001-4242।
2: कृषक मित्रों, वर्तमान मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए मत्स्य पालन के क्षेत्र में ध्यान देने योग्य बातें और योजनाएं विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे राहुल रंजन। लोकगीतों के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां। लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं जलीय कृषि बीमा सुरक्षा योजना के बारे में। किसान भाई बहनों, जलीय कृषि बीमा सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालक किसान भाई बहनों और जलीय कृषि उद्यमियों को प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और आकस्मिक नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY के अंतर्गत आती है। आइए जल्दी से जान लेते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभ कवरेज के बारे में। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः दो विकल्प मिलते हैं। पहला है बेसिक इंश्योरेंस, जिसके अंतर्गत बाढ़, चक्रवात, सूखा पड़ने पर लाभ की गारंटी मिलती है, यानी केंद्र सरकार आपकी सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए भी आपको लाभ पहुंचाती है ताकि आपका जीवन अच्छे से कट सके। और दूसरा है व्यापक इंश्योरेंस, जिसमें आपदाओं के साथ साथ बीमारियों से बचाव में भी लाभ मिलता है। वित्तीय प्रोत्साहन इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। सरकार प्रीमियम राशि का 40% तक वन टाइम इंसेंटिव, जो कि अधिकतम 1,00,000 रुपए तक होती है, सीधे किसान भाई बहनों और मत्स्य पालक भाई बहनों के बैंक खाते में भेजती है। अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को सामान्य श्रेणी से 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। आइए अब जानते हैं इस योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र के बारे में। पारंपरिक एक्वा कल्चर फार्म, जिसके पास तालाब हो, और मैरी कल्चर केज, कल्चर बायोफ्लॉक और RAS तकनीक रेसवेज और सीविड कल्चर चलाने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण NFDP पोर्टल पर विजिट करके किया जा सकता है। बीमा पॉलिसी को खरीदना होगा। अधिकृत बीमा कंपनियों से जलीय कृषि बीमा खरीदे जाने चाहिए और इंसेंटिव के लिए भी आवेदन किया जाना चाहिए। पॉलिसी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या मत्स्य विभाग के कार्यालय से संपर्क कर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप PMMKSSY टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कॉल करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन ले, 1800-425-1660 यानी 1800-425-1660। योजना से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश आप विभागीय कार्यालय जाकर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य विभाग पर भी जाकर देख सकते हैं, जो कि वहां पर उपलब्ध रहते हैं। और आइए इस जानकारी के बाद सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है वर्तमान मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए मत्स्य पालन के क्षेत्र में ध्यान देने योग्य बातें और योजनाएं। भेंट वार्ताकार हैं राहुल रंजन और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंट वार्ता।
3: किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं मत्स्य पालन के बारे में। किस तरह से आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, अगर आप मत्स्य पालन करने की सोच रहे हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इन सभी बातों पर जानकारियों को साझा कर रहे हैं राहुल रंजन जी, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर हैं फिशरीज के और रांची में कार्यरत हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातों को, जानकारियों को साझा करेंगे। राहुल रंजन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: धन्यवाद और सभी श्रोतागण को भी धन्यवाद। नमस्कार
3: राहुल जी। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि अगर कोई मत्स्य पालन करने की सोच रहा है, अपनी आमदनी को बढ़ाने की सोच रहा है, तो यह कितना कारगर हो सकता है?
4: ये तो आज के समय में से ही नहीं, पूर्व के समय में भी मत्स्य पालन क्या है कि हम लोग समझते हैं क्या एक हमारे लिए जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सभी लोगों के लिए हम लोग बात करते हैं कि मत्स्य पालन सिर्फ

0: बैकअप नहीं है, ये स्थायी आजीविका हमारी है और हो सकती है आराम से, और जो हमारे जितने भी मत्स्य पालन है इसमें स्थायी आजीविका को लेके आगे बढ़ सकते हैं।
1: कहा जाता है कि मछली पालन जो है आय का एक वैकल्पिक और महत्वपूर्ण स्रोत है, ऐसे में मत्स्य पालक भाई जो है या हमारे किसान भाई बहन जो इसको करने की सोच रहे हैं, तो क्या क्या मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का पालन करना चाहिए?
0: मत्स्य पालन के लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास में, हमारे किसान भाई बहन के पास में जो उनके पास में अपने स्रोत हैं, जैसे जमीन के साथ में तालाब और जल स्रोत है, सबसे पहले तो उनका देखना चाहिए कि उनकी कौन सी मिट्टी होती है, जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी हम लोग बात करते हैं, वो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, उपयुक्त मिट्टी होती है, और इस मिट्टी में क्या है, पानी जो है वो उसका ठहराव ज्यादा होता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला होता है कि वो लगातार आपको पानी का ठहराव होने से मछली हमारे अच्छा करेंगे। दूसरा है जो हमारी भारत में सबसे मुख्य और संतुलित मछली जो होती है उसको रखना चाहिए, जिसमें खासकर हम लोग बात करते हैं कि तीन तरह की हमारी मछलियां होती हैं, एक ही पानी के अंदर में जो सतही मछली होती है, मध्यवर्ती मछली होती है और तल में। सतही मछलियों में जनरली हम लोग बात करते हैं रेहू है, कतला है और मृगाल है, ये तीनों जगह में रहती है। और उसी तरीके से जो एक्जोटिक फिश है, जो कि हम लोग चाइनीज फिश बोलते हैं, उसमें कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, ये सब चीजों को लेके हम लोग भी उसमें डाल सकते हैं, ताकि हमारा जो मिश्रित मछली बनेगा और एक अलग अलग जगह में वो लोग स्तरों में रहेगा तो उसका पानी का सही उपयोग हो पाएगा और वहाँ पर मतलब हमारी मछलियाँ अच्छे से खाना पीना कर पाएंगी। दूसरा है कि हमें उसके पानी की गुणवत्ता एवं देखभाल भी समय समय पे करनी पड़ती है, ताकि उनको सही और ऑक्सीजन मिल पाए, और साथ साथ में जो उसका पीएच है, ऑक्सीजन है, अमोनिया नाइट्रेट है, ये समय समय पे जांच करनी चाहिए हमारे किसान भाई बहनों को। और अंतिम जो इसमें सबसे बड़ा जो चीज है किसान भाई बहनों के लिए क्या, उनको प्राकृतिक भोजन, जैसे पानी में हमारे उनके मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन जो होती है फाइटोप्लांकटन और जू प्लांकटन, जो की मछलियों का आहार है, उन्हें उनका प्राकृतिक भोजन मिलते रहना चाहिए। यदि आप वहाँ पर प्राकृतिक भोजन की कमी है तो हम सब कुछ समय में हम लोग जीवामृत बना के उसमें तालाब में डालते हैं, या साइड में तालाब के किनारे में मुहाने में हम लोग गोबर डालते हैं, पुरानी गोबर को, और वो पानी के साथ घुलते मिलते हैं और वो प्राकृतिक भोजन बना लेते हैं।
1: अच्छा,
0: ये सब चीजों को उनको ख्याल रखना चाहिए और तभी जाके हमारा मछली पालन अच्छा हो पाएगा।
1: सामान्यतः अगर बात किया जाए तो मत्स्य पालन के लिए कितने जमीन की आवश्यकता होती है और कितना एरिया पर गड्ढा करना चाहिए?
0: देखिए, ये गड्ढा तो 6 से 8 फीट के होने चाहिए, जो कि सबसे उपयुक्त है।
1: अच्छा,
0: और 150 बाय 150 का और 100-100 मतलब एक अच्छा तालाब बन सकता है काफी, जो हमारे यहाँ मतलब पूरे झारखंड में सबसे अच्छे माना जाता है कि आप अच्छा फसल आप वहाँ से ले सकते हैं, अच्छा पैदावार ले सकते हैं वहाँ से।
1: मौसम के अनुसार जो है, या कभी गर्मी का समय आता है, कभी बरसात का समय आता है, तो ऐसे स्थितियों पर भी क्या अनुकूल प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, मछलियों के ऊपर में, और क्या सावधानियां उस वक्त में बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
0: गर्मियों में पानी का स्तर कम हो जाता है, इसलिए हमने बात करे थे कि यदि हमारी तालाब की गहराई 6 से 8 फीट होते वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में होती है, और हमारी यदि मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है तो वहाँ पर उनका पानी का ड्रेनेज नहीं होता है तो काफी अच्छा होता है। बरसात में पानी अच्छी होती है, भरी रहती है, तो उस समय में हमें लगातार जो जाल मारने का काम करना चाहिए ताकि वहाँ ऑक्सीजन बना रहे, क्योंकि तालाब जब पूरा फुल हो जाएगा तो उनको ऑक्सीजन के लिए थोड़ी कमी होती है। और जो हमने बात कर रहे थे कि उनका समय समय पे जो निरीक्षण करना चाहिए, खासकर रोग हो जाते हैं कभी कभार बरसात के समय में ज्यादा हो जाते हैं, कि हमारे ऐसी मछलियां हैं जो कि छोटी बाहर की मछलियां या कुछ मेढक कुछ अन्य प्रजाति की मछलियां उसमें घुस जाती है या अन्य कीट पतंग घुस जाते हैं तो उसे नुकसान करते हैं। तो लगातार जाल मारना चाहिए किसान को, और तालाब के किनारे की व्यवस्था जो है उसके अच्छा से रखना चाहिए ताकि दिक्कतें नहीं हो मछलियों को। खासकर ये जो किनारे के मुहाने में हम जरूर से गड्ढा करवा के रखें ताकि मछलियां हमारे सर्दियों में कोई दिक्कत ना हो।
1: अच्छा, एक बात और बताएं कि भारत सरकार और राज्य सरकार भी जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं मत्स्य पालकों के लिए, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो वर्तमान में किसान भाई बहन या मत्स्य पालक भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: सबसे बड़ी योजना जो है हमारे भारत सरकार से चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
1: अच्छा,
0: जिसमें खासकर हमारे मछली उत्पादन, उनके प्रसंस्करण और मौजूदा जो संरचना होते हैं उसको बड़ा करने का

0: और मजबूत करने का दिया जाता है। साथ
1: अच्छा
0: ही साथ इसमें फीड को लेके, मछली के कोल्ड स्टोरेज को लेके, मार्केटिंग को लेके एवं जाल को लेके आपको उसमें सब्सिडी भी मिलती है उस योजना से
1: अच्छा
0: लाभ लाभ लेने पे। तो एक योजना ये है। दूसरी एक योजना है जिसमें राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड होते हैं, NFDB बोलते हैं, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और खासकर उनके बीज उत्पादन यूनिट मार्केट से लिंक कैसे किया जाए इनको लेके उनको दिया जाता है। राज्य स्तर पे झारखंड जैसे हमारे सबसे अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर मछलियों को लेके, उसमें सबसे बहुत अच्छा काम होता है कि किसानों को पट्टा पे जो तालाब सार्वजनिक है उसमें पट्टा में दिया जाता है, बीज वितरण किया जाता है और समय समय पे और जरूरत के हिसाब से हमारे जो मछुआरा भाई बंधुओं को है उनका प्रशिक्षण एवं उनका बीमा भी करवाया जाता है।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: जो हमारे SC और ST जो हमारे भाई बहन हैं उनको विशेष लाभ दिया जाता है और इनका तालाब निर्माण एवं मछली पालन के लिए उनको अधिक सब्सिडी भी राज्य स्तर पे दी जाती है। और खासकर यदि हम देखेंगे कि कुछ हमारे SHG से जुड़े हुए हैं या ऐसे महिलाओं को है उनको भी इनको फायदा मिलता है इस योजना।
1: तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, भारत
0: जी
1: सरकार और राज्य सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं मत्स्य पालक भाई बहनों के लिए संचालित की है, जो कि बहुत अच्छा और कारगर है। और हम समझते हैं कि अगर जानकारी हो तो वो मत्स्य पालक भाई बहन इसका उपयोग करके अपने आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और मत्स्य पालक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं।
0: जी
1: राहुल
0: हाँ जी
1: जी,
0: हाँ
1: अभी
0: सही
1: आपको
0: बात।
1: पूरी दुनिया सुन रही है, हमारे किसान भाई बहन और मत्स्य पालक भाई बहनों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारे खासकर सभी भाई बहन को एक ही संदेश, अच्छी संदेश देना चाहेंगे कि मछली पालन को ताकत बनाएं और इसे अपना अनुशासन और मेहनत के साथ में, जिस तरह से हम अपने तालाब को, आप अपने फसल को नियमित देखभाल करते हैं तो अपने तालाब को भी नियमित देखभाल करेंगे और इसे बैकअप आय ना बना के स्थायी आजीविका बनाइए, ताकि हमारे भाई बहन इनसे आगे बढ़ के और एक अपना एक इंटरप्रीनियरशिप खड़ा कर पाएंगे
1: अच्छा,
0: और आत्मनिर्भर हो पाएंगे।
1: बिल्कुल, आत्मनिर्भर होना आज के समय में बहुत जरूरी है राहुल जी, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं वो अगर अपना सेटअप खड़ा करते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को नौकरी दे पाएंगे। और हमारे
0: एकदम
1: प्रधानमंत्री जी का भी कहना यही है कि आप रोजगार देने वाले बनिए, तभी जा
0: एकदम
1: करके जो है लोगों का कल्याण होगा। तो किसान भाई बहनों और हमारे मत्स्य पालक भाई बहनों, ये थे राहुल रंजन जी, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर थे और मत्स्य विभाग रांची में पदस्थापित हैं, और जानकारियों को साझा कर रहे थे कि किस तरह से आप मत्स्य पालक के क्षेत्र में आ सकते हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आ सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, और अगर इस क्षेत्र में आने की सोच रहे हैं तो भी क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इन जानकारियों को साझा कर रहे थे और यह भी बता रहे थे कि भारत सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा करके अपने आर्थिक क्षेत्र को समृद्ध कर सकते हैं। राहुल जी, आपने हमें समय दिया, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद सभी किसान भाइयों और खासकर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे किसान भाई बहन मछली को लेके अपना व्यवसाय को शुरुआत करना चाहते हैं, मछली पालन को लेके, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगे बढ़े और आत्मनिर्भर भारत की निर्माण करें।
1: कृषक मित्रों, अभी आप मत्स्य पालन के क्षेत्र में वर्तमान मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए ध्यान देने योग्य बातें और योजनाएं विषय पर राहुल रंजन जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित थी यह भेंटवार्ता। और इस भेंटवार्ता के बाद आइए एक नजर डाल लेते हैं बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसूडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 5,870 से 5,888 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम 3,780 से 3,790 रुपए प्रति क्विंटल और अन्य 3,270 से 3,345 रुपए प्रति क्विंटल। अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5,890 से 6,280, मध्यम का भाव रहा 3,879 से 4,470 और अन्य 3,478 से 3,557। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 12,290 से 12,349, चना दाल का भाव रहा 8,669 से 9,455 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का भाव रहा 7,987 से 8,998

0: रुपए प्रति क्विंटल। मूंग दाल का भाव रहा 11,534 से 11,875 रुपए प्रति क्विंटल। कृषक मित्रों, यह थी बाजार भाव की सूचना, और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: और आइए अब बातें करते हैं ढैचा की खेती के बारे में, जो कि हरी खाद के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मित्रों, हरी खाद के लिए ढैचा की खेती सबसे उत्तम मानी जाती है। यह एक दलहनी फसल है जो केवल 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। इस खेत में ही जोत कर सड़ा दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में भारी मात्रा में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं इसकी बुआई का समय और तरीके के बारे में। सामान्यतः मई जून यानी खरीफ या धान की फसल लगाने से पहले का जो समय होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। इसके लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिटक कर बोना चाहिए। और हाँ, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना फायदेमंद रहता है। बीज उपचारित करने के लिए नीम के पानी का जरूर उपयोग करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं पानी और खाद के बारे में। मित्रों, ढैचा की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है। शुरुआती दिनों में एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जून में बारिश शुरू होने पर पानी की समस्या नहीं रहती है। इसे किसी विशेष रासायनिक खाद या उर्वरक की जरूरत भी नहीं होती। मिट्टी में इसे कैसे मिलाएं, अब इसकी बात कर लेते हैं। जब फसल 45 से 60 दिन की हो जाए और उसमें फूल आने से पहले की अवस्था हो, यानी जमीन से करीब 3 से 4 फीट ऊंची हो, तब इसे खेत में मिला देना चाहिए। विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले खेत में पानी भरें, फिर ढैचा पर रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाकर इसे मिट्टी में अच्छी तरह दबा दें। हरी खाद के कारण यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और भूमि को उपजाऊ बनाता है। इसके उपयोग से अगली मुख्य फसल जैसे धान में यूरिया की जरूरत लगभग 30% तक कम हो जाती है। तो ये थी हरी खाद के लिए ढैचा की खेती की जानकारी। और इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं अजीत कुमार अकेला, अनिल सिंह और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

किसान भाई बहनों, अभी आप अनिल कुमार सिंह, अजीत कुमार अकेला और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीत के इस प्रसारण के साथ ही आज का कार्यक्रम कृषि जगत बस यहीं तक। अपने रेडियो मित्र अनिमेश को दीजिए अनुमति, लेकिन इस विचार के साथ कि आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00। 7:10 पर होगा जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस ने 1 सीट पर दावा जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता दोनों सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
4: कोडरमा समाहरणालय में आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और बिजली विभाग समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और सभी योग्य लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित है। सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे अपनी सुविधा अनुसार उक्त सूची का अवलोकन करते हुए बीएलओ के माध्यम से मैपिंग की प्रक्रिया में भाग लें।
6: विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। सभी बूथों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची 23 मई 2026 से प्रकाशित की जा चुकी है। इस अनमैप्ड मतदाता सूची में आपके क्षेत्र की बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा। आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि कृपया अपना, अपने परिवारजनों का एवं अपने मित्रों का नाम इस सूची में अवश्य जांचें। अगर आपकी मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है तो अपने बीएलओ से संपर्क करके अपनी मैपिंग अवश्य करा लें। एसआईआर के इस विशेष अभियान का हिस्सा बने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दें।
4: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन जारी है। आज रांची पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि 2 सीटों में से 1 सीट गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस को मिलनी चाहिए।
7: हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के अगले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में भेज सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में तो झारखंडी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है।
4: इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार हो।
8: बैठक हो रही है और मुख्य भूमिका में माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और सभी से विचार विमर्श करके घटक दलों को विश्वास में लेकर यह फैसला होगा। लेकिन झामुमो कार्यकर्ताओं की यह भावना है कि इस बार दोनों सीट पर झामुमो के उम्मीदवार जाएं, खुशी का माहौल झारखंड में बनेगा। इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल कांग्रेस पार्टी है, दावा बनता है, अच्छी बात है।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
9: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी, सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: पलामू प्रमंडल के बूढ़ा पहाड़ इलाके में जनगणना कार्य सामान्य तरीके से शुरू हो गया है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि इस बार क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह बदली हुई है और जनगणना कर्मियों को नक्सलियों का खतरा नहीं है।
10: उग्रवाद को लेकर के लगातार अभियान चलाए गए और वहाँ पे सफलता मिली। आज के डेट में वहाँ टिकट भी है। सभी स्थान पर जनगणना का कार्य आरंभ किया गया है। आने वाले समय में उस क्षेत्र में भी जनगणना की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का वो क्षेत्र है, कह सकते हैं कि उसका इतिहास रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है जिला प्रशासन के स्तर से, जिला पुलिस के स्तर से कराए जाएंगे, जिसका निश्चित तौर पर वरीय स्तर से भी अनुसरण किया जाएगा।
4: रांची पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के संगठन

0: मुख और 10 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी अमृत होरो को गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि अमृत होरो हत्या, रंगदारी, लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी जैसी कई घटनाओं में शामिल रहा है।
1: वर्तमान में पीएलएफआई को झारखंड में अमृत होरो के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, अमृत होरो लापुंग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह पर आया हुआ है। टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहां पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो पीएलएफआई का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये, और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा।
0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य शलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में आज और कल मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा और डाल्टनगंज समेत उत्तर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में पहुंचकर खिताब के लिए मुकाबला करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस ने 1 सीट पर दावा जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता 2 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: सदर अस्पताल परिसर में नन्हा सा दिल बाल हृदय जांच एवं निवारण को लेकर झारखंड में इको कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में सदर अस्पताल डाल्टनगंज में भी दर्जनों बच्चों का इको हार्ट कार्डियक स्क्रीनिंग की गई। इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव दत्त ने बताया कि 23 मार्च से 100 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है। 20,000 बच्चों की जांच का लक्ष्य पूरे झारखंड में रखा गया है।
2: 100 दिन का कार्यक्रम है जिसमें हमारा आंकड़ा है कि हम 20,000 से ज्यादा बच्चों का जांच करेंगे, अर्थात 200 से ज्यादा बच्चों का यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। सदर अस्पताल डाल्टनगंज में कैंप लगेगा जो कि इको हार्ट कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप है। इस स्क्रीनिंग कैंप का उद्देश्य यही है कि जो परिवार वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको इको स्क्रीनिंग तक लेके जाना और आगे की ऑपरेशन तक सुविधा प्राप्त कराना। इस कार्यक्रम में जो भी बच्चे संदिग्ध पाए जाएंगे वो कन्फर्म्ड होंगे, उन बच्चों का हमारा सेंटर रायपुर, हैदराबाद, मुंबई एवं दिल्ली पलवल के सेंटर में हम भेजेंगे, जो कि एक बच्चे के साथ दो परिजन का जाने आने का किराया, हॉस्पिटल में रहने खाने का एवं ऑपरेशन दवाई संपूर्ण मुफ्त है। एक्चुअली कार्यक्रम 0 से लेकर 18 साल का है, परंतु इसमें 24 साल के बच्चों को भी हमने ऑपरेशन कराया है।
1: पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद में शनिवार को गोली चल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
3: बहुत ही दुखद घटना है और ये दुखद घटना को भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आज कोई व्यक्ति अगर घर बना रहा है और जबरदस्ती यहाँ पे जाकर लोग मारपीट करके हत्या करने के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासन के नाकामी है। इस चीज को मैं दर्शाऊंगा और मैं एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई और उनके परिवार के 4-5 सदस्य बुरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज कराना और जिनको देख रेख करना बहुत ही मतलब मुश्किल घड़ी में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल बढ़ने का कारण है लाइसेंस हथियार, घर में हथियार, किसी को गोली मार देना, किसी के ऊपर जमीन हड़प लेना, ऐसे तमाम मुद्दे। मेरे ख्याल से प्रशासन को पूरे गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए ताकि इन परिवार को न्याय मिले, क्योंकि इनके 30-35 साल का एक व्यक्ति की हत्या हो गई, इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है।
1: पलामू के चैनपुर गोलीकांड में शामिल 2 अपराधी पकड़ लिए गए हैं जबकि 15 अपराधी अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी साझा की।
4: विगत 23 तारीख को चैनपुर थाना अंतर्गत गांव रामपुर में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें की गोलीबारी की घटना भी घटित हुई थी। इस संबंध में जो विक्टिम है, विक्टिम पक्ष के बयान के आधार पर एक FIR दर्ज हुई। FIR में 17 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाए गए और 25 लोग अन्य अज्ञात के विरुद्ध में FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज होते ही कांड की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया। SIT दल के द्वारा जिले में तथा जिले के अन्य जगह पर, जिले के बाहर अन्य जगह पर भी लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसके दौरान जो घटना में शामिल नामजद जो 17 अभियुक्त थे उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है।
1: प्रधान डाकघर डाल्टनगंज में पलामू डाक मंडल के डाक अधीक्षक संजय कुमार संगम ने आधार सेवा के अतिरिक्त काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक आधार कार्ड का काम किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

जिले में आजकल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कल्याणी।

0: स्वास्थ्य परिवार कल्याण पत्रिका कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बातों की जानकारी लेकर हम आते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आपको डॉक्टर मीरा मुर्मू से ली गई भेंट वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा गर्भवती महिलाओं में मधुमेह, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, पहले कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें। आज के दौर में महिलाओं की भूमिका घर से लेकर समाज और कार्यक्षेत्र तक लगातार बदल रही है। बढ़ती जिम्मेदारियां, तनाव और सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं भी नशे की लत की चपेट में आ रही हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला मुद्दा है। बहनों, महिलाओं में नशे की लत को समझना, उसके कारणों को पहचानना और सही उपचार तक पहुँचना बेहद जरूरी है। नशे की लत एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी नशीली पदार्थ जैसे तंबाकू, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, मेडिसिन पर निर्भर हो जाता है। आज कई महिलाएं इस आदत के कारण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संघर्षों से गुजर रही हैं। अक्सर रिश्तों, परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं के भावनात्मक दबाव के कारण महिलाओं में तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे शांति या राहत पाने के लिए नशे का सहारा लेने लगती हैं। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षित माहौल भी महिलाओं को नशे की ओर धकेल रहा है। कुछ महिलाएं अपने साथी, दोस्तों या ऑफिस के माहौल के प्रभाव के कारण नशे का सेवन करने लगती हैं, जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन और रिश्तों में अस्थिरता नशे की प्रमुख वजहों में शामिल है। वर्क लाइफ बैलेंस, बढ़ता प्रेशर और कैरियर संबंधी चुनौतियां भी नशे की आदत को जन्म देती हैं और वे तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। बहनों, क्या आप जानती हैं कि नशा पान करने से हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं? लीवर, किडनी, हार्ट पर असर, हार्मोनल असंतुलन, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, गर्भावस्था में गंभीर जोखिम देखने को मिलते हैं। इससे बच्चों पर मानसिक प्रभाव पड़ता है, रिश्तों में दूरी बनती है और परिवार भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। नशा पान से जब हमें इतने सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तो हमें इससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। महिलाओं के लिए नशा मुक्ति का रास्ता अक्सर पुरुषों की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि कई महिलाएं इस डर से मदद नहीं लेती कि समाज उन्हें जज करेगा या परिवार बदनाम होगा। अधिक सामाजिक दबाव के कारण नशे की बात स्वीकारना भी महिलाओं के लिए कठिन होता है। घर और बच्चों की देखभाल के कारण भी वे इलाज के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन बहनों, नशा मुक्ति के लिए परिवार का समर्थन और बिना किसी भेदभाव के सही इलाज करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। नशा मुक्ति केंद्रों में महिला विशिष्ट उपचार और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा बहुत प्रभावी होती है, और यदि कोई महिला घरेलू हिंसा या किसी अन्य उत्पीड़न के कारण नशे का शिकार हो रही है, तो सुरक्षा और सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन या राष्ट्रीय महिला आयोग से भी संपर्क कर सकती हैं। नशा मुक्ति केंद्र महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल देते हैं, जहां वे बिना संकोच इलाज शुरू कर सकती हैं। पारिवारिक मदद और भावनात्मक सहयोग किसी भी महिला की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, नशे की लत एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान संभव है। सही समय पर पहचान, परिवार का सहयोग और उचित उपचार महिलाओं को पूरी तरह से स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन की ओर ले जा सकता है। हर महिला को ये जानना चाहिए कि नशे से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा खुला है, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। आगामी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो आइए हम ये प्रण लें कि किसी भी प्रकार के नशे की लत से हम दूर रहेंगे और परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग देंगे। नशे का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव किस प्रकार पड़ता है और हम इनसे कैसे दूर रह सकते हैं, इसी विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। और अब कुछ जरूरी बातें। बहनों, माँ बनना एक स्त्री के लिए सुखद अनुभूति होती है। गर्भावस्था के दौरान हमें अपना और गर्भ में पल रहे बच्चे का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। पूरे गर्भकाल में हमेशा हमें डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए अपनी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं में मधुमेह की समस्या भी देखने में आती है, तो आइए इसी विषय पर डॉक्टर मीरा मुर्मू से और जानकारी प्राप्त करते हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश।
1: वैसे तो आज के समय में डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक कॉमन समस्या बनती जा रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान मधुमेह हो जाता है गर्भवती महिलाओं को। ये क्यों होता है, इसका असर उनके बच्चे पर कैसे पड़ता है और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीरा मुर्मू। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, गर्भावस्था के दौरान जो मधुमेह होता है वो पहले अगर कोई महिला मधुमेह की शिकार उन्हें होता है या फिर मधुमेह की शिकार जो नहीं रहती महिला उन्हें भी हो सकता है गर्भावस्था के दौरान?
2: गर्भावस्था के दौरान जो मधुमेह है यह कभी भी हो सकता है। यह एक्चुअली जैसे पहले से किसी को नहीं है उसको भी डायबिटीज हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को हमेशा एंटीनेटल चेकअप के दौरान ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। जब भी वो विजिट में आती है वो उसका ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं। उसमें अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ रहता है तो ये हमारा एक इंडिकेटर है कि उसको डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज जो है जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उसको दिक्कत होगा, वो प्रेगनेंसी होने के बाद भी उसका असर रह सकता है।
1: कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं जब गर्भ धारण की उसके पहले तो डायबिटिक नहीं थी, लेकिन गर्भ धारण के दौरान या उस अवस्था में उन्हें डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, तो क्या ये पहले महीने दूसरे महीने या फिर कब ये उनका सिम्टम्स इस तरह कब दिखने लगता है?
2: थर्ड मंथ से तो जो भी है नॉर्मल चेकअप कराते रहना है रेगुलरली, तो उसमें हम लोग जो ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका

0: जो कि ग्लूकोज को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में इम्बैलेंस हो जाता है ग्लूकोज।
1: खाने पीने में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए उस दौरान?
0: उस दौरान खाने पीने में बैलेंस डाइट लेना है, ऐसा डाइट नहीं लेना है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़े। डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज हमारा पहला मैनेजमेंट का उपाय है। पहला उपाय हमारा यही रहेगा कि पर्सन जो है वो डाइट कंट्रोल करे और कुछ टहले, वॉकिंग वगैरह करे, जिससे कि बढ़े नहीं। और मेडिसिन्स तो इसमें हम लोग कोशिश करते नहीं पड़े, फिर भी अगर बढ़ता है तो उसमें इंसुलिन ही एकमात्र रहता है उपाय।
1: तो क्या इसका असर होने वाले बच्चे पे भी पड़ता है?
0: समय से पहले डिलीवरी होने का चांसेस होता है, और बच्चे में उसमें भी इंसुलिन लेवल का हो सकता है कि उसको डिलीवरी के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसको ये
1: अच्छा, ये
0: भी
1: सब संभावना
0: चांसेस
1: रहती
0: हो
1: है।
0: सकता है।
1: अगर मान लीजिए कोई गर्भावस्था की अवस्था में कोई महिला है और उसे डायबिटीज़ पता चल गया है कि उसका ब्लड शुगर हाई है, लेवल जो है हाई है, तो आप अपने तरह से एक डॉक्टर होने के नाते क्या उसे सलाह देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो उनका जो स्वास्थ्य बेहतर बना रहे और सही तरीके से बच्चे को जन्म दे सके?
0: इसके लिए मैं उनको यही कहूंगी कि अपना जो है वो चेकअप कराएं, शुगर लेवल पहले अपना लेवल को देखें और मॉनिटर करते रहें हर महीने, और डाइट कंट्रोल करें जिसमें कि मीठा कम ले और थोड़ा बहुत टहला करें जिससे कि उनका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तब तो उनको फिर मेडिसिन लेना होगा, उसमें इंसुलिन वगैरह का ऑप्शन है, किसी डॉक्टर की सलाह लेनी होगी।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी महिला को मधुमेह हो जाता है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है, और डॉक्टर साहब मैंने जैसा बताया उनकी बातों पे यदि आप अमल करेंगे, टहलेंगी, तो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कुछ कम हो सकता है और एक स्वस्थ बच्चे को वो जन्म दे सकती है। डॉक्टर साहिबा, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गर्भवती महिलाओं में मधुमेह, इसी विषय पर बहनों अभी हमें डॉक्टर मीरा मुर्मू जानकारी दे रही थी। और इस जानकारी के बाद आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म का ये गीत। और इस गीत के साथ ही बहनों, स्वास्थ्य परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी का समय बस अब समाप्त होने को है। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें, मुस्कुराते और हंसते रहें। सीमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

हार्टलेस इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीतबद्ध किया था गौरव दागौनकर ने और गीत लिखा था अराफत महमूद ने।

ब्रदर्स फिल्म का ये गाना आपने सुना, सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में। संगीतबद्ध किया था इसे अजय अतुल ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने सुना फिल्म एक विलेन का ये गीत। इसके गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दो लफ्जों की कहानी, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरमान मलिक की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था अमाल मलिक ने और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने।

सुलेमान के संगीत निर्देशन में आपने सुना ये गीत। ये गीत लिया गया था फिल्म फैशन से। आवाजें थी श्रुति पाठक और सलीम मर्चेंट की, गीत लिखा था इरफान सिद्दीकी ने।

कुमार के शब्दों को संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। आवाजें थी नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की। फिल्म का नाम था शंघाई।

0: सोनू कक्कड़ की आवाज में आपने सुना फिल्म जिस्म 2 का ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: हेलो डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या और न्यूज़ @9 होगा रात्रि 9:00। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम

0: एनएबीएल प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग

0: ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advance to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black

मिले ना मिले हम, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन किया था साजिद वाजिद ने।

0: संदीप श्रीवास्तव की शब्दों को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। फिल्म का नाम था न्यूयॉर्क, आवाज थी सुनिधि चौहान की।
1: आजा तेरी दुआवां लगी

नौटंकी साला फिल्म का ये गीत आपने सुना आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाजों में। इसके गीतकार और संगीतकार थे आयुष्मान खुराना।

गजनी फिल्म का ये गीत आपने सुना जावेद अली और सोनू निगम की आवाजों में। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया था इसे एआर रहमान ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

लियोन डिसूजा की आवाज में आपने सुना फिल्म एक दीवाना था का ये गीत। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन किया था ए आर रहमान ने।

अंकित तिवारी की आवाज में आपने सुना फिल्म भाग जॉनी का ये गीत। इसके गीतकार और संगीतकार थे आर्को। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन। राग है हेम बिहाग।

आप सुन रहे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाया पहाड़ी धुन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके

0: and Royal Gujarat Titans were 185 for 2 in 15.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। कल सुबह 5:55 पर इसी आवृत्ति पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर। तब तक के लिए हमें दे अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।